एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की पहली तिथि। तदनुसार 23 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारतीय क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटिव का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 ये समय है चिंतन का। तो आइए सुनते हैं चिंतन।

चिंतन ईश्वर, ईश्वर अर्थात भगवान। ईश्वर के बारे में विचार करते समय हमारे मन में जो तस्वीर उभरती है वो किसी चित्र या मंदिर में देखी गई सुंदर सी प्रतिमा हो सकती है। वास्तव में इस दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व है और जो पूरी दुनिया को, इस सृष्टि के सारे कार्यकलापों को चलाए हुए है। ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे सारे दुखों को दूर करने वाला एकमात्र ईश्वर ही है। अलग अलग धर्मों में उसे अलग अलग नामों से जाना गया है, कहीं गॉड, कहीं खुदा और कहीं भगवान। भगवान हमारे सारे दुखों को दूर कर देंगे, ये विचार ही स्वयं में बहुत बड़ा है और मनुष्य को ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाता है। दुनिया में हरेक सवाल का जवाब हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन विचारणीय बातें हैं। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, ठीक ऐसे ही ईश्वर साकार रूप में मौजूद है। पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी जीव, वनस्पति, पानी, सूर्य, धूप, चांद, तारे, वास्तविक खगोलीय रूप में हम देखते हैं, इन सब की रचना करने वाला ईश्वर ही है, ऐसा हम सभी मानते हैं। जब हम दुख में, परेशानी या किसी संकट में घिर जाते हैं तो एकमात्र उम्मीद भगवान से ही होती है। तब स्वतः ही प्रार्थना के लिए हमारा सिर ईश्वर या उस परम सत्ता के प्रति झुक जाता है और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के बाद हम महसूस करते हैं कि हमारे दुख कम हो रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी हम अपने पूरे जीवन चक्र में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और ये हमारे विश्वास का सबसे बड़ा आधार है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना, इसमें करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं सुप्रभात। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है और ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, उसके स्वयं के हाथों में उसका कर्म और उसका भाग्य है। इसीलिए कोशिश करें, अच्छे कर्म अपनाएं और साथ ही साथ सत्मार्ग पर चले और ईश्वर में आस्था विश्वास हमेशा बनाए रखे। इसी सुविचार के साथ आज की वंदना कार्यक्रम की शुरुआत कविता कृष्णमूर्ति के स्वर के साथ कर रहे हैं।

रूपिन चटर्जी, कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों के बाद अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण नंदिनी शरण की स्वर में ये भक्ति रचना। श्रोतो कहते हैं कि सवेरे सवेरे अगर ईश्वर का नाम लिया जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसी कोशिश में हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना। इस भक्ति रचना में स्वर आप सुनेंगे अनुराधा पूर्वाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम
1: FM 106.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। मां गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्त का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा मां गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 9:30 और 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 व 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

श्रोताओं, सायंकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे बच्चों के मुख से कार्यक्रम, 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का, 6:00

और 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। वो 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7 बजे समय रहेगा चौपाल का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या। 11 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10 बजे समय रहेगा फिल्म संगीत का।

सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

मुलक बचायो क्या भयो दिन रात कमायो क्या भयो दिन मुलक बचायो क्या रे भयो।

0: ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना ईश्वरदास व साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे व्यंग वार्ता, और वार्ताकार हैं अमित शाह।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। व्यंग की इस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छे लगेंगे और इससे एक समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। हम लोगों ने पूजा के लिए भी घी की अलग वैरायटी बना डाली। हम लोग सीते साधे जरूर हैं, लेकिन खरीदारी में पूरे देश से दो कदम आगे हैं, खासकर जब बात घी की हो। अपने खाने के लिए तो हम ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे CID की जांच चल रही हो, गाय का है कि भैंस का, देशी है या फॉर्म वाला, खुशबू कैसी है, रंग कैसा है और मिलावट तो नहीं। लेकिन वही आदमी जब बाजार में भगवान के लिए घी लेने जाता है तो आवाज बदल जाती है, सेठ जी पूजा वाला सस्ता सा दे दो। मतलब खुद के पेट के लिए शुद्धता और भगवान के लिए सिर्फ सुविधा। शहर और गांवों की गलियों में ये नजारा आम है। बस स्टैंड हो या कोई नाका, हर दुकान पर एक डिब्बा अलग रखा रहता है पूजा का घी, न खाने लायक न सूंघने लायक, लेकिन भगवान के नाम पर बिकने वाला। अब बड़े बड़े मॉल भी अछूते नहीं है। घर में वही घी ले आओ तो घरवाली कह दे इतना घटिया घी क्यों लाए, और मंदिर में चढ़ा दो तो सब संतुष्ट, चलो भगवान का काम हो गया। मतलब जो खुद के मुंह में नहीं डाल सकते वही भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। पहले माँ कहती थी जो घर में अच्छा है वही ठाकुर जी को चढ़ेगा। जब सब बदल गए, खैर भगवान का बजट भी तो बनने लगा है। बाजार वालों ने भी तो हमारी मानसिकता पकड़ ली, इसलिए उन्होंने अलग ब्रांड बना दिए, पूजा स्पेशल, मंदिर पैक, आरती वाला घी, जैसे भगवान की थाली भी अब MRP देखकर सजती हो। कहीं कहीं तो लोग अपने लिए किलो खरीदते हैं और भगवान के लिए ग्राम में, खुद के लिए क्वालिटी, भगवान के लिए क्वांटिटी भी कम, बस औपचारिकता। मेलों में देख लो, स्नान करेंगे, भोग लगाएंगे और भोग में वही सस्ता घी डालेंगे जिसे घर में सब्जी में डालने में भी बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तकलीफें दूर करें, लेकिन हम उनकी थाली में वही रखते हैं जो खुद नहीं खाते। ऊपर बैठकर भगवान भी शायद हंसते होंगे, दुनिया वालों अपने लिए देशी और मेरे लिए देशी लिखा हुआ। असल में पूजा का मतलब सामग्री नहीं, नियत है, पर हमने नियत भी बाजार से ही खरीद ली। आज हालात ये है कि आदमी अपने हिस्से में स्वाद रखता है और भगवान के हिस्से में समझौता। शायद इसलिए भगवान भी कभी कभी सोचते होंगे, भाई जब तुम्हें असली चाहिए तो मुझे नकली क्यों। हालांकि कहा जाता है भगवान को सब मंजूर है, वे हमारे खर्चे नहीं हमारे भाव देखते हैं। घी से भी ज्यादा भाव शुद्ध होना जरूरी है, बाकी तो आपकी मर्जी। हम चलेंगे सेकंड व्यंग पे कि साल भर झगड़े लेकिन खास दिन में 100 बार में तेनू पावा वाला स्टेटस प्रेम। आजकल प्रेम का असली ठिकाना घर नहीं स्टेटस बन गया है। घर में चाहे संवाद शून्य हो, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रेम का स्तर ऐसा कि देखकर लगता है मानो विश्व की सबसे सफल प्रेम कथा तो यही जन्मी हो। दिन भर घर में संवाद कुछ ऐसा होता है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हारी आदतें कभी नहीं बदलती, मेरी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन जैसे ही शादी की सालगिरह या जन्मदिन आता है तो वही व्यक्ति मोबाइल उठाता है और एक प्यारी सी फोटो ढूंढता है जो शायद पिछले 3 साल पहले किसी शादी में खींची थी, और उसके ऊपर लिखता है 100 बार में तेनू पावा, ऐसा जीवन साथी हर किसी को मिले।

नीचे दिल फूल और कभी कभी तो दो कबूतर भी उड़ रहे होते हैं। इधर घर के कोने में बैठा दूसरा पक्ष सोच रहा होता है, वाह अभी दो घंटे पहले तो कह रहे थे कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी नरक है और अब लिख रहे हैं कि 100 जन्म चाहिए। असल में ये प्रेम नहीं, सोशल मीडिया प्रबंधन है। जिस तरह सरकारें अपनी उपलब्धियां बताने के लिए विज्ञापन देती है, उसी तरह कुछ पति पत्नी अपने रिश्ते का विज्ञापन संस्करण स्टेटस में जारी करते हैं। हालांकि सरकार अच्छा करती भी है इसलिए बताती भी है, तो हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हकीकत में सुबह चाय पर बहस, दोपहर में ताने और शाम को मौन युद्ध, लेकिन रात होते ही मोबाइल चमकता है, तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी हो। कभी कभी तो लगता है अगर सोशल मीडिया न होता तो कई रिश्तों को सार्वजनिक प्रेम दिखाने का मंच ही नहीं मिलता। और मजे की बात तो यह है कि परंपरा केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रही है, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी सब इसी परंपरा के अनुयायी हो गए हैं। पीठ पीछे आलोचना और सामने स्टेटस में प्रशंसा, यही आधुनिक सामाजिक संतुलन हो चुका है। इसलिए अब जब भी किसी का स्टेटस दिखे, मेरी जान मेरी दुनिया 100 जन्म पावा, तो समझ लीजिए कि यह प्रेम का नहीं सोशल मीडिया के युग का सबसे सफल इमेज मैनेजमेंट है। हाँ, लेकिन मेरी बात दिल पर मत लेना, संभव है आपका प्यार सचमुच सच्चा हो और यदि स्टेटस पर ही खुशियां बसती है तो फिर आज से एक छोटा सा बदलाव कर लीजिए। क्यों न हम शिकायतों की जगह प्यार के सकारात्मक किस्से लिखना शुरू करें। जरा ठंडे दिल से सोचिए, जो व्यक्ति आपके साथ है उसने भी शायद आपके लिए बहुत सी चीजें दिल में दफन की होगी, कई आदतों को अनदेखा किया होगा, कई बार चुप रहकर रिश्तों को बचाया होगा, तभी तो उसने आपके साथ जीवन निभाने का वादा किया है। हो सकता है सोशल मीडिया का 100 बार में तेनू पावा कभी कभी दिखावा लगे, लेकिन अगर हम चाहें तो वही स्टेटस रिश्ते की सच्ची मुस्कान भी बन सकता है। बस फर्क इतना है, स्टेटस में लिखे प्यार को थोड़ा सा जिंदगी में भी लागू करना पड़ेगा। और अगर यह हो गया तो फिर सच मानिए, 100 जन्म पावा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लोग खुद कहेंगे ऐसा प्यार सबको मिले। और इस व्यंग को मैं अंत में किस किस को प्यार करूं फिल्म का जो गाना है 100 बार में तेनु पावा, उसको याद करते हुए समापन करता हूं। मेरा अगला व्यंग है कि मेकअप का बजट इतना बड़ा कि विदाई में अब रोना ही कम हो गया। एक समय में शादी में सब कुछ भावुक दिखाई देता था, जैसे जिस तरह विदाई का सीन होता दुल्हन का, तो उस दृश्य के दौरान वैसे आज भी होता है, ऐसी बात नहीं, भावुकता आज भी बची हुई है, लेकिन फिर भी बारात चली जाती, बैंड वाले अपना सामान समेट लेते और आंसू का सिलसिला देर रात तक चलता रहता। किसी की आंख नम होती, किसी का गला भरा जाता और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर रो कौन रहा है और क्यों रो रहा है। अब थोड़ा सा दौर बदल चुका है, विदाई के समय अब आंसू की जगह मुस्कुराहट ने ले ली है। वैसे यह सही भी है क्योंकि शादी खुशी का अवसर है, फिर विदाई के समय क्यों रोना। फिर कैमरा भी तो पिक्चर मुस्कुराहट में ही तो अच्छी लेता है, हर कोई चाहता है कि अंतिम दृश्य भी बिल्कुल फिल्मी लगे। बस फर्क इतना हो कि फिल्म में बारिश होती है और यहाँ आंसू नहीं गिरने दिए जाते। कुछ दिन पहले पुराने पत्रकार मित्र के घर जाना हुआ, उन्होंने नया वाहन लिया था, सो बधाई देने पहुंच गया। चाय पर चर्चा हुई तो भाभी जी ने अचानक एक गहरी सामाजिक टिप्पणी कर दी, आजकल दुल्हने विदाई में रोती नहीं है। मैं भी एकदम शौक हो गया कि आजकल दुल्हने विदाई में रोती नहीं है, ये कैसे हो गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये चर्चा लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच जो अंतर है उस होगा, क्योंकि हो सकता है भी लव मैरिज में दुल्हनों को रोने का एक मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि पहले से लव मैरिज हो जाती है, अरेंज मैरिज में जरूर मौका मिलता है। लेकिन भाभी जी ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि मामला भावनाओं का नहीं मेकअप बजट का है। उनका तर्क था कि आजकल दुल्हन का मेकअप इतना महंगा होता है कि विदाई के समय आंसू बहाना एक तरह से आर्थिक नुकसान जैसा हो जाता है। रोने का मन तो करता होगा लेकिन दिमाग में तुरंत आवाज गूंज जाती है, बहना रोना मत मेकअप फल जाएगा। बस यही बात भावनाओं पर ब्रेक लगा देती है। दुल्हन भी मन ही मन सोचती होगी अगर अभी रो पड़ी तो लाखों रुपए के मेकअप का जो पैकेज लिया था उसका क्या, वो तो बिगड़ ही जाएगा। इसलिए विदाई के समय भावनाएं भीतर ही भीतर कंट्रोल मोड में चली जाती है। वैसे देखा जाए तो यह भी एक तरह की नई पीढ़ी की उपलब्धि है, पहले लोग भावनाओं के आगे हार जाते थे, अब मेकअप आर्टिस्ट के निर्देशों के आगे जीत जाते हैं। हालांकि सच यह भी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेटियां अपने माता पिता से प्रेम नहीं करती है, कम हो गया है। भावना आज भी उतनी ही गहरी है, बस उनका प्रबंधन आधुनिक तरीके से हो गया है। वैसे भी तकनीकी ने दूरी का मतलब ही बदल दिया है, मोबाइल वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के इस युग में विदाई के बाद भी बेटी रोज सामने दिखाई देती है। पहले चिट्ठी आने में हफ्ते लग जाते थे, अब वीडियो कॉल में 2 मिनट में। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में विदाई के समय एक नया संवाद सुनाई दे, बिटिया रोना मत मेकअप भी खराब होगा और कैमरे की वीडियो भी धुंधली सी हो जाएगी। समाज बदल रहा है, रश्में

0: बदल रही है। बस एक बात तय है, आंसू की जगह अब वाटरप्रूफ मेकअप ने ले लिया है। धन्यवाद साथियों।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी व्यंग वार्ता, और वार्ताकार थे अमित शाह। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 होने को है। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं युगल गीत, यानी कि दो कलाकारों द्वारा गाए गए गीत। आइए आगाज करते हैं जंगली फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है शंकर जयकिशन की धुन।

0: ये गीत अभी आपने सुना आई मिलन की बेला इस फिल्म से। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और शंकर जयकिशन की धुन।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई आप बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त

0: अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: शागिर्द फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं बैराग फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। प्यार की कसम।

साथियों, समय की कमी के चलते आज इस गीत का सिर्फ मुखड़ा आपको सुनवाया है। फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में ये पूरा गीत आपको सुनवाया जाएगा। ये गीत था फिल्म ब्लफ मास्टर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इसी के साथ आज के इस हम है रही प्यार के इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है।

0: और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं आना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमा के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटिव करियर

0: टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रही। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के 2 ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित।

0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 96.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है।

पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम।

पिंजरा चाहे सोने का हो, परिंदे को तो आसमान चाहिए। तू भी अपने ख्वाबों को पिंजरे में मत रख, तुझे भी तो उड़ान चाहिए। सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारा विषय है परिंदे। श्रोताओं, परिंदे आजादी का सबसे खूबसूरत एहसास। उनके पास न कोई घर का नक्शा है, न बैंक बैलेंस, न जात पात, बस दो पंख हैं और पूरा आसमान। इंसान ने हवाई जहाज परिंदों को देखकर ही बनाया। कवि ने कहा है, परिंदों से सीखो उड़ना, वो गिरने से नहीं डरते।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, डिसेंट लुक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, परिंदा पिंजरे में नहीं आसमान में खुश रहता है। वो हमें सिखाता है कि खुशी पैसों में नहीं आजादी में है। चाहे घोंसला छोटा हो पर अपना हो।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ली?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: श्रोतों, एक छोटी सी चिड़िया हजार बार गिरती है, तब जाकर उड़ना सीखती है। वो हार नहीं मानती, तूफान आता है तो वो डर कर बैठती नहीं, तूफान से भी ऊपर उड़ जाती है।

श्रोताओं, परिंदे हमेशा झुंड में उड़ते हैं, वी शेप में उड़ते हैं, ताकि एक दूसरे की हवा से मदद मिले। वो हमें सिखाते हैं, अकेले उड़ोगे तो थक जाओगे, साथ उड़ोगे तो मंजिल आसान होगी। श्रोताओं, आज इंसान ने जाल, प्रदूषण और मोबाइल टावर से परिंदों का घर छीन लिया है। हमें फिर से दाना पानी रखना चाहिए।

श्रुतम परिंदों की तरह बनो, जमीन पर रहो पर सोच आसमान जैसी रखो। छोटा सोचोगे तो घोंसले में ही रह जाओगे, बड़ा सोचोगे तो पूरा आसमान तुम्हारा है। पंख नहीं हौसलों से उड़ान होती है। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत शिल्पी माथुर के स्वर में।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

एफएम 96.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुनाया राजस्थानी लोक संगीत शिल्पी माथुर के स्वर में। प्रातः के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाश

0: मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज, इस वर्ष की थीम है विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश भर में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की। और रक्षाबंधन पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज रविवार को कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिन वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इस उपलब्धि पर हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
0: इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। इस अवसर पर इसरो की ओर से अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि देश आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में गौरवशाली आयाम स्थापित कर विकसित भारत के संकल्प को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संबंधित जिलों में निर्वाचन अधिकारी चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर बनाए गए नियंत्रण कक्षों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही निकाय चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। वहीं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर में कल विभिन्न स्कूलों में जागरूक मतदाता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर के शास्त्री पार्क में वरिष्ठ नागरिकों ने लोगों को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी भोपाल रामगंज मंडी नई रेल लाइन परियोजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। परियोजना के तहत करीब 25 किलोमीटर लंबे इस नवनिर्मित ब्यावरा राजगढ़ सोनकच्छ रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया। 276 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 27 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। उधर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन से दौसा रेल लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कल इस खंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से सफलतापूर्वक ट्रायल संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि रेल विद्युतीकरण के बाद क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा।
2: 1996-97 में स्वीकृत परियोजना पर 16 मार्च को पहली यात्री ट्रेन आरंभ होने के बाद रेल विद्युतीकरण पूरा कर डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन चलने से खर्च आधा रह जाएगा तथा क्षेत्र का दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, हरियाणा, इंदौर, भोपाल, नागपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख नगरों से सीधा जुड़ाव होने से यात्रियों और माल भाड़े में व्यापारियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज विशाखापत्तनम में होगी। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री

0: और प्रतिनिधिमंडल खेलों में परस्पर सहयोग मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि बैठक में चर्चा करेंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने कल प्रदेश भर में सघन निरीक्षण कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के 101 नमूने इकट्ठे किए गए। राजधानी जयपुर में करीब 7000 लीटर मिलावटी मूंगफली का तेल सीज किया गया। वहीं विभिन्न जिलों में लगभग 1200 किलो दूषित और अमानक खाद्य सामग्री नष्ट की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज अवकाश के दिन रविवार को भी कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। झालावाड़, बारा, बूंदी, डीडवाना और उदयपुर सहित कई मंडलों में विशेष काउंटर संचालित होंगे। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और पैकिंग बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना चाहिए। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में आयोजित IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थी। स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर हुई इस समिट में उन्होंने कहा कि AI से दवाओं की खोज में तेजी लाई जा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पायलट परियोजनाओं से जनसंख्या स्तर पर कार्यवाहन की ओर बढ़ने के लिए सरकार, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर निर्बाध आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से कोलंबो में शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से ये मैच शुरू होगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर, नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश भर में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की तथा राखी पर

0: राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज रविवार को कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।

0: साहब बीबी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माताजी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: उस जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर

1966 में ही आई थी ये जिंदगी कितनी हसीन है।

0: दोस्तों, सायरा बानू जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगले आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे।
2: आज

0: कि आज तुम्हें क्या हो गया है। तो अपने दिल को समझाओ।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: आज के बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत।
2: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागड़ेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: जी जी जी नमस्कार धन्यवाद।
2: आलोक जी रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें

0: घटनाएं सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
1: जी, यानी ये कह सकता हूं मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है बचपन से।
0: जी,
1: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास, और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी माँ का घर था जहां बिजली भी नहीं थी और वहां एक लकड़ी का रेडियो था।
0: वो किस जगह रहती थी?
1: वो हमारे अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद हमारा जो एक मोहल्ला है, जो हमारा गांव है छारा नगर गांव, तो वहां पर रहते थे। तो सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था और वही हमारा मॉर्निंग एक उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई है। अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं, इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती, जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था, यानी 11-12 साल का, और मुझे क्या समझ है गीतों की, लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड फिल्म्स के जो जिंगल्स, और इन सबके साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: ओहो,
1: मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो। और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते। तो मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है।
0: तो वैसे प्यारी बात है कि आप इतना ज्यादा जुड़े थे। तो फिर वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
1: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रूपीज में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है, यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल की बातें है, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
0: अरे वाह वाह वाह,
1: आज मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूं और आपके सामने प्रस्तुत हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है।
0: क्या बात है, तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा, विविध भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
1: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहां टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यहां तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
0: जी,
1: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
0: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
1: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार कर

0: करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी यानी कि ये जर्नी चली कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ न कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। एक अभिनय यानी कि 2-2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है। जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था।
1: हमें यही सोचा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है, तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ। तो ये भी एक जिंदगी का सबक है।
1: तो बहुत दुखी हुए होंगे?
0: बहुत दुखी हो गया था, मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो, जब अगर आप एनएसडी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे यानी कि मिला जुलाकर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात है। यहाँ रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहाँ बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है,
1: बिल्कुल,
0: और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूं गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे? तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजरात
0: लगातार, उनका तो बहुत अच्छा। हाँ, अच्छे प्लेज अभी भी चले।
1: हाँ, अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों
0: जी,
1: भाई है
0: जी।
1: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
0: वाह वाह।
1: तीन वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
0: क्या बात है।
1: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला।
0: वाह वाह।
1: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तू तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लिवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी वैसी, हाँ, इंकलाबी कलम रही शुरुआत से।
0: तो ये सब उन्होंने लिखे?
1: उन्होंने ही लिखे। दो शौक सही नगर वस्तु तो, और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को।
0: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
1: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा यह है कि आप वहां जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस्ट होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस्ट होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहली हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से, तो आपको असामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
0: अरे गजब।
1: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और

0: किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे,
1: ओहो
0: तो वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो, तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है। तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाएंगे वो तो
0: हारमोनियम पर बैठ जाएंगे तो
1: फिर
0: वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा

0: हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे के एन पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर
1: बिल्कुल
0: केरला का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहां पर वहां की जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जो फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहां
1: अच्छा
0: पर, वहां थांगटा सीख कर आए। हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरीपयट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होकर एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है,
1: वाह सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज। यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास सब, लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे तो, और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें करेंगे।
0: जी जी जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहां पर?
0: जी धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है, जो
1: हाँ
0: दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आज भी
1: वाह
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल है।
0: माता को लेकर कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी,
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा।
1: गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, पर थोड़े से भाई टूटे ना।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूं तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था।
0: अच्छा,
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा ऐसा?
1: हाँ।
0: और आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते हैं?
1: हाँ, क्योंकि हमारे वहां बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं। तो बहुत
0: तो एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ जिसका नाम रुक्ष्मणी है और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बंबई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बंबई निकलना है।
0: तो ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रहे।
1: हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को चाहते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन, अच्छे से प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया, अब यहां क्या करेंगे। तो यहां पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले।

0: तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मंच देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था। आगरीपाड़ा, मलाड़ से आगरीपाड़ा जाना, तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9000 रुपए और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हजार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया।
1: जी जी जी।
0: और फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों को, वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे।
1: लो, अब ये समझाना भी मुश्किल है
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए हैं, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था।
1: ओ ओ ओ,
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना अपना काम कर
0: अपना अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की, अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की।
1: अलग अलग,
0: ये थिएटर एज अ थेरेपी। तो बच्चे हंसते थे और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा है, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया कि लोगों से मिलना।
1: वो एक प्रोसेस है कि
0: वो एक प्रोसेस है, वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए
0: नहीं थे,
1: और
0: थे नहीं थे,
1: अपने
0: नहीं
1: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: जी जी जी जी। मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जूहू में
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे
1: जी,
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था जींस का जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस, तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको ऐसे निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो 5-5 एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी
1: बिल्कुल,
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की और मुझे याद है कि जय मां संतोषी मां की

0: फिल्म रिमेक बन रही थी उस वक्त दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, दो चार नंबर लेके निकला था, तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं
1: बड़ौदा चले,
0: बड़ौदा चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया। चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो। तो मैं बोला चलो यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे। लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन।
1: ओह,
0: हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, तीन चार दिन के बाद फिर रेंट देना है, ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी तशन। ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ
1: और ये पहली फिल्म बनी।
0: पहली फिल्म बनी,
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा।
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म
1: बहुत
0: थी, अनिल कपूर
1: मल्टी स्टार।
0: हाँ, अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय कृष्णा आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे, भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए। तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं।
1: ओके।
0: अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था।
1: ओ।
0: तो प्रिंटआउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। तो मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंट आउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहां क्या कर रही। लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ। हमने हंसा तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
1: पर्दे पर
0: 70 mm के पर्दे पर कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी।
1: वाह,
0: मराठा मंदिर अपने आप में
1: एक ऐतिहासिक थिएटर,
0: ऐतिहासिक थिएटर है। तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा।
0: हाँ, फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया। क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा।
0: एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी। राजपाल यादव जी हो गए, और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपेट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल।

0: बजरंगी भाईजान में भी आपने काम किया?
1: जी जी जी, बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था बस में।
0: हाँ, बस वाला सीन। जी, बिल्कुल। उसके बारे में बताइए, कैसा रहा?
1: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे, और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, बोला हम बोल लेंगे सर। और वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
0: अच्छा, ऐसा भी था?
1: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे। और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था।
0: अरे बाप रे,
1: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ,
0: तुम हाँ करना।
1: हाथ करना। तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे, बरोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, वो मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो, कभी आप आज भी वो फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर, सेम स्टार, तो वो मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में। बोला हाँ सर, मैंने बजरंगी भाई। हाँ हाँ, कमाल का यार, तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है। तो उसमें मैंने हंसने का एक सिग्नेचर बनाया था।
0: जी जी,
1: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे।
0: ओके,
1: प्रेम रतन धन पायो, बिग बॉस, और बजरंगी भाईजान।
0: ओके,
1: और एनडी देसाई स्टूडियो था, क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
0: और ये करजत।
1: हाँ, करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने को एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान, हाँ, तो सलमान भाई से बोले अच्छा है, अच्छा है, हाँ, गुड गुड, ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान। तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
0: मायने रखता है। जी, एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो
1: मैं
0: कौन सा गाना होगा?
1: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो झोली मेरी।
0: क्या बात, अदनान सामी।

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ
0: ये बातें
1: तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहां वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा, टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है जो गुजराती थिएटर है जो पैसों वाला थिएटर है तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ।
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले।
0: अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी
1: तो ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते
0: हैं। और बहुत
1: है।
0: पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप टीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होते हैं।
0: हाँ।
1: ये बहुत मायने रखते हैं, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
0: जी तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे तो जहां तक लगता है कि आज से 3000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था।
0: जी
1: बिफोर बीसी में हम, बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है, हम ही कमजोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर

0: यानी आज तक नहीं मरा।
1: हाँ,
0: तो कैसे
1: लेकिन हमेशा ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
0: हाँ, हमेशा कहा जाता है। तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए। बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूं ना, कि थिएटर घर घर तक पहुंचाने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाजी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य है, उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबक की आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये
1: अंकुर जी ने,
0: अंकुर जी की विधा है ये
1: जी।
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको। हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें। आपके पास कहानी है और मंच है
1: बस,
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम,
0: सेम टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझकर कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में।
1: बिल्कुल।
0: और व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं।
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं चल रही हैं। आप तो कई भाषाएं जानते हैं और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहाँ मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया। मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको।
1: अच्छा,
0: हम लोग ट्राइबल है एक्चुअली, वो तो
1: घुमक्कड़। मराठी का एक प्रकार है?
0: नहीं, ये
1: का एक प्रकार है,
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है।
1: अच्छा,
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे बाबा,
0: अगर आप कहे तो मैं उस बोली में ना, मेरी एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो आपने वो किरदार वैसा बनाया या
0: नहीं? नहीं, मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर जिन्होंने ओ माय गॉड लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतु बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहां जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जा रहा था सांजा सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना। एकदम डिफरेंट,
1: कुछ गुजराती के आ रहे हैं,
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों की ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से कुछ ले लिया,
1: मिक्स है,
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी यानी कि नुक्ते उकते लग जाते हैं ठीक ठाक, तो ये है। अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूं
1: जी।
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं, बस लाइफ सेट है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल,
1: तो
0: नहीं।
1: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
1: जी,
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यावसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है।
1: हाँ।
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं।
1: हाँ।
0: ना,
1: और मुंबई शहर आपको पीसता है,
0: पीसता है, जलना पड़ता है, और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है
1: जी।
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीजों में भटक जाते हैं। तो उन चीजों में अगर ना भटके,

0: और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है। जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं
1: बिल्कुल
0: अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है। चलते चलते एक गाने की फरमाइश है
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
1: जी।
0: और रेणु जी
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: कहानी पर उन्होंने जो
1: तीसरी
0: फिल्म
1: कसम बनाई।
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: वाह वाह
0: तेरे मन में
1: वाह,
0: सितम।
1: जरूर ये गाना सुनाते हैं
0: जी
1: आपको।

0: आलोक जी बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना जी, समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है। और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक

0: शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है।
1: क्या
0: तो
1: बात है,
0: रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
4: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
3: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
5: जय में इसका मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं FM 92.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और श्रोताओं आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: तो कहो

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में ये गीत रामलीला फिल्म से। शब्द रचना है सिद्धार्थ और गरिमा की, संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं दावत इश्क फिल्म से कीर्ति सगाथिया, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में गीत। बोल हैं कौशल मुनीर के और संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं एश किंग और साशा तिरुपति के स्वर में गीत हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से। बोल है मनोज मुंताशिर के और संगीतकार हैं मिथुन।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म से आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में गीत। पोल है इरशाद कामिल के और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं सिंगर स्कीम फिल्म से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत। बोल है मयंक पुरी के और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: एफएम 42.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अपेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

0: करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: प्यार है तुम।
1: हसर जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना।
3: हम

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा,
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल।

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, बीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना के आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों के महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं आज की इबारत, जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल होने वाले हैं। तो आज की इबारत है, माँ ने कहा था चंदा में रहती हैं लाखों परियां, उन परियों के बीच कभी खुद को भी देखा करते थे। सपनों की वो दुनिया जिसमें आसमान के बादल पल में मौसम बदल देते और चांद सितारे अपनी चमक से आंखों को रोशन कर देते। कभी देखी चंदा पर बैठी चरखा कातती एक बुढ़िया माई, तो कभी चंदा ने आप थाली में खाकर हमें प्याले में ही दे दी मिठाई। जितना अनोखा बचपन उतना ही अनोखा हमारा खामू का संसार, पर बड़े होकर भी कहां बदला चांद से हमारा ये प्यार। रॉकेट छोड़े यान उतारे नाप लिया जग सारा, पर चंदा की सपनीली बातों ने ही मन को संभाला। तो आप किस तरह से देखते हैं चांद को ये हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में कौन सी वो लोरी थी आपको जो सुनाई जाती थी सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्मी गीतों को भी लोरी के रूप में सुनाया जाता है। वहीं चांद से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जाना है चांद की सैर पर? हमें बताइए। तब तक सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा।

0: रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे
1: जाएंगे।
0: अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे
1: खाएंगे। दीदी को भी ले जाएंगे दूध मलाई खाएंगे।
2: अरे दीदी बच्चा थोड़ी है।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे।
3: दीदी साथ में जाएगी तो कौन तुम्हें नहलाएगा, कौन करेगा कंगी पट्टी कपड़े कौन पहनाएगा।
0: हवा करेगी कंगी पट्टी और बादल नहलाएंगे, परियां कपड़े पहनाएंगी सारे मुंह धुलवाएंगे
1: धुलवाएंगे।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे।

0: करना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत है, बाजे पर बजवाएंगे
1: बजवाएंगे।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की तरह।

0: तुम लोग कुछ भी मजा न पाओगे।
1: ले चलो ना दीदी को साथ।
0: मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर पर।

0: जाएगा फिर पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।
1: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर पर जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हुए यानी चेचक के दाग हुए, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहीं या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी इसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारी आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है, तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि मां ने अपने बच्चों को चंदा मामा परियां चांद सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी मां से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है, और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप

चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

0: बचपन हर गम से।
1: गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारामंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूं, ऐसा हमारे साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अंबिली अंबावा तमारा कुंबिलील एंथोड़ू, ऐसा गाना है, मेरी मां सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है। इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब है, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नजर से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नजर आता है, तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नजर आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह

चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नजरिए से उसे देखते हैं। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पुए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागिरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा का को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में चलता है एक जादुई नगर, जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती, और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते। कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते, तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन, उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त के इस दौर में भी कहां कम हुआ बचपन का वो फसाना। डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ली दुनिया की हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए, मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है। यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो बताइए किसकी आवाज में है और संगीतकार कौन है।

वचन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, रवि का संगीत। यही हमने सवाल आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है, और हमारे साथी ने आशा भोसले की आवाज को भी सही पहचाना। चांद वही है, आसमान भी वही है, बस उसे देखने का वो बचपन कहीं खो गया है। पहले वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, अब पास होकर भी दिल तन्हा सा हो गया है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज विज्ञान चांद तक पहुंच गया, रॉकेट और यान उसकी सतह को छू रहे हैं, लेकिन हमारे मन का चांद आज भी उतना ही रहस्यमय और प्यारा है। शायद इसलिए चांद आसमान में जितना दूर है, हमारे दिल और हमारी यादों में उतना ही करीब है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस का महत्व है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इसी दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरा था, और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं, कागज की कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे, चंदा मामा के संग संग हम भी आसमान चढ़ जाते, कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन, बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियां, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियां सुनना, कोई बोल रहा वहां परिया रहती हैं तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला, बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी तो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारे जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्योहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं। और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया, हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीजें नहीं है जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी। माँ लोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है, रात को चुपके से आंगन में रख जाता है। हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी, और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहां न डर था न उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थी, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी खाना खिलाते समय सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी, वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा, सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है, चांद से मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है। कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग सुनते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी, और ये हमारे लिए गर्व का दिन था, हमारे देश भारत की

से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही खास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नजर आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ये मानते हैं, ऐसा अंग्रेजी में उन्होंने लिखा जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा, निम्बुणिया चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई, आज माझा पाड़साला झोप का ग येत नाही। ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे और ऐसा ही हमारे एक और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है, लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं। आपको पहचानना है आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नजदीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे। हम स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके दो बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारी एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का जमाना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नजर आ जाएगी, वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में मैं चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वो ही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है, बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहां से चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना होगी कब डूबेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी हैं। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में बड़ोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपनी ही आंखों से कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है, क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं, या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं, साथ ही बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

0: दूं टकटा दूं टकटन्या।
1: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती कहती, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है। चांद सी महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्न संसार में विचरण करते थे। पता ही

चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सरक कर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे और साथी कह रहे हैं कि ममता माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है। और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज में है और किसने लिखा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को, सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है, तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे और साथी कहते हैं कि बहने चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं। बहने चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कहने के बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेटयान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या। गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है, वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारस मणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है, वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं, क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काटती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकलकर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे कौर साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें यह विश्वास दिलाती है कि अंधकार कितना

भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी, और हमें ये भी बताइए कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ? जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं, तो कई बार हमारी नजर चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है। तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए, और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर

0: कि आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वी एन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष

0: विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉ मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि

0: जीआरएसई ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। जीआरएसई की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमरीका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमरीका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे,

अड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत। दीवाना फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी, मिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अमोला महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा, अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: कुछ कहता है।
1: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत को फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अरपा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले शेख, शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक भीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन और साथ ही भर्री टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: तो है के मानी। अरे रिटक तो हमारी जहन के सामने ही रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना। कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बटके जरा बटके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय। टॉय के माने खिलौना। बी ओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय के माने लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट न जाए हाथ से।
2: एक छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रही है। बी ओ वाई टॉय के माने लड़का। टी ओ वाई बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है?
3: टी ओ वाई बॉय।
0: टी ओ वाई बॉय होता है क्या?
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई टॉय
0: होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
3: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
3: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठनी देगी?
3: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
3: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
3: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
3: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
3: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
3: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। टी ओ वाई टॉय।
3: बी ओ वाई टॉय।
0: नहीं, टी ओ वाई।

0: ही देख रहा था।
1: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
1: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क जो देख रही थी, आता कैसे?
1: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
1: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
1: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
0: हाँ, मैं समझा था तुम भूल ही गई होगी।
1: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है?
1: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
0: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
1: नहीं तो क्या, पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
0: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम?
0: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
1: हाँ, मेरे भी।

0: मैं उस समय नीम का बहाना करता हूँ
1: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
0: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
1: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
0: अच्छा
1: हाँ, अब बैठो सीट पर। ओफो नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
0: अच्छा ले लिया।
1: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा जब मैं कहूँगी तब छोड़ना, ठीक है?
0: अच्छा अच्छा छोड़ो।
1: नहीं नहीं अभी नहीं, अब सामने देखो ऐसे।
0: ऐसे
1: तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के।
0: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी, वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
0: अब धक्का दो ना।
1: हैंडल ठीक से थामना।
0: अच्छा
1: देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूँगी गो, ठीक है?
0: हाँ अब कहो ना गो।
1: गो।
0: गिरा।
1: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना?
0: कहाँ हटाए?
1: लगी तो नहीं?
0: नहीं।
1: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
0: अच्छा
1: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
0: हाँ तुमने किसे सीखी?
1: खुद ही सीखी।
0: नहीं।
1: और नहीं तो क्या?
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
1: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
0: पापा ने।
1: नहीं
0: तो फिर?
1: तुम ही बताओ।
0: मुझे क्या मालूम?
1: मामा जी ने।
0: पापा मम्मी ने चलाने दी।
1: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
0: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
1: झूठ।
0: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
1: फिर
0: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर मम्मी ने थक कर कहा वो चूहे ले गए होंगे।
1: चूहे?
0: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया, अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
1: ताकि चूहे न ले जाए। तुम चूहे।
0: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
1: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: मेरे पास भी ऐसी ही कार थी। उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने। पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता। काय की तोड़ा मेरा
0: बीओ
2: नहीं बीओ वाई
0: बीओ वाई बीओ वाई।
2: जानती हो जानती हो, हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
0: हैं? कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ। चल
0: चल
2: आजा
0: जल्दी
3: अगर हमारे भी पंख होते।
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
3: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती।
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
3: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
0: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं, शाबाश आगे चलो आगे चलो।

0: पर आगे से मैडम डांटती है, पीछे चला पीछे चला।
1: परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
2: क्यों, उसे क्या हुआ?
1: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी, मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
2: फिर
1: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा, शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय? फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
2: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
1: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देख कर हंसते। अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
2: क्या?
1: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
2: हाँ थे तो?
1: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए, वहाँ उनके मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
2: उन्होंने शादी की होगी।
1: शादी? तुम्हें कैसे पता?
2: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
1: अलग? अलग क्या?
2: उफ़ो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। BOY टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
1: तुम्हें कैसे पता?
2: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया।
3: झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
1: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
2: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
1: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
2: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी, मम्मी भी कहती है ना लड़कियों को शर्माना चाहिए।
1: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
2: और तुम?
1: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
2: डरपोक डरपोक,
1: खच्चर मिली नहीं,
2: नहीं तुम तो

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए,
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट टाकी दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है,
3: बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना?
1: मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम, सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूँगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूँगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूँगा ऐसे।

0: तुम्हारी सिगरेट भी चुआ ले जाएगा।
1: आज बाग में खेलेंगे। हमारे बाग में वहाँ कोई नहीं है ना?
2: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
2: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
2: तो चलो फिर।
1: चलो
2: चलो।
1: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
2: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
2: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना हम खुद इसमें घूमने जाते।
2: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
2: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
2: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
1: क्या पौधों को सींचेंगे?
2: वो क्या होता है?
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
2: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
2: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर।
2: चलो आओ। अरे देखो तो पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
2: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
2: कहाँ?
1: यहाँ तो आओ।
2: अरे ये तो वही बुलबुल है।
1: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गए थे अलग मकान में।
2: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
1: अब क्या करें इसका?
2: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कहीं की?
2: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी।
3: झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मूठ ही उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था। फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
2: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
1: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
2: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
1: हाँ वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
2: तुम कहाँ जा रहे हो?
1: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
2: रुमाल?
1: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
2: डैडी मारेंगे?
1: वो कुछ नहीं कहेंगे।
2: झूठ
1: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूँ वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
2: क्यों?
1: वो बहुत देर से लौटते है ना।
2: अच्छा लपेटो फिर।
1: ना तुम लपेटो।
2: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
1: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
4: नहीं मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
2: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
1: लो।
2: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
1: मुझे भी।

0: मुझे पहले ही आ गई।
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाचित से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को।

0: मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
1: क्यों?
0: वो साइकिल मामा जी लाए है ना,
1: उससे क्या होता है?
0: मामा जी की शादी है,
1: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
0: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
1: क्यों?
0: अफ़ो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
1: फिर?
0: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया, मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
1: मुझे भी नहीं।
0: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं, मैं नहीं डरती वरती पापा से।
2: झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे।
0: तुम डैडी से डरते हो?
1: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
0: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे। TOY
0: बाय।
1: नहीं।

0: मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: छूट, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं, ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखे।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ।
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती, मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: तुझसे नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यहीं रहो, वो झगड़ा करते हैं ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यहीं रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, भी होगी।
1: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी तुम ठहरो, मैं भी आया।

0: और अच्छी लगती है ना। हे तुम राघव,
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, कूद खेलना, ऐसे ऐसे ऐसे।

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया।

0: किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्र जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूँ तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है
2: जी,
1: ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ,
2: सब कुछ खिलाफ
1: विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह।
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात।
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह।
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मायने नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है। छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां के शुरुआती दिन कैसे थे?
2: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
2: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वन प्लस वन का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा वन वन एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी।
2: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
2: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है?
1: वाह।
2: तो मेरी तरफ देख के हंसे, हो बोले यही तो है एनएसडी सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के
1: जी,
2: लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
2: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला, मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ, एक साड़ी पहनी हुई

0: नहीं, औरत थी, तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे, उनका स्वागत आगत। तो वहां रख के मैं चला गया, तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके
0: और उनका नाम था अनामिका हक्सर।
1: ओ हो घोड़े को जलेबी
0: जिन्होंने आगे फिल्म मेरी क्लासमेट जो पीएन हक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहाँ से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग?
0: नहीं नहीं वो नहीं लगा। उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त है दोनों भी, दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है।
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: इश्क़ मोहब्बत फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है.
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है. एक्चुअली पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है.
0: जी जी.
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा.
0: अरे कसम.
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है.
0: वाह वाह.
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर कि जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता. खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं.
0: जी.
1: तो इसीलिए मैंने मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था. हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोन करके गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं. नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे.
0: वाह वाह वाह.
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है.
0: क्या बात.
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ. तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था. वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था. सुबह 8 बजते ये आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था. किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे हैं. उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है. एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया. तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था. तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर. तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी. सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
0: जी,
1: और कारंजी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए. और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
0: वाह
1: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड की ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहां आना हुआ. और सौभाग्य से कारंजी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहां आई तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया. तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी. तो इस तरीके का माहौल था. आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो. और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है. उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का. वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे. पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे. तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा. देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं. फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है, उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से

0: के चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का। हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10। हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमावडन सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इब्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहां रविन्द्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़नी, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो, तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं है, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है बाद में देखेंगे, खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर देख के चल।

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के गोले पर थोड़ा जो भूख है।

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज ज्ञान।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है। ए भाई, ए भाई, जरा देख।

0: अनामिक हक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
1: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
0: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। बृजमोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहां, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है, नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, एक प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। नीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपने तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
1: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
0: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
1: जी,
0: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ तीन साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का यह कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो दो या तीन ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के दो वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है, इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझवारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची अदा मराठी में
1: जी,
0: या मुहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में प्रांजल साई किया है, वहां आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने

0: करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, तीन मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां दो फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है।
0: उसी में जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशरभाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें तीन अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने दो या तीन फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने तीन ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो दो ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे।
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं है,
1: एक्स्ट्रा थे
0: ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातना घर हिंदी में की,
1: बहुत इंटेंस नाटक
0: है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक्थ नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक्थ के, वो बर्मिनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है जिनने ब्रेक्थ को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक्थ, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रजमोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे है ये डायरेक्टर, और दैट वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव।
0: और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लिया, आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
0: मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।

0: यस। और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा
1: जी। यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी,
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब 2 अलग अलग रास्ते,
1: अलग दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी,
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपरेटरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब,
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको, तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
1: इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है।

0: के रैना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अहलूवालिया है, इनके सामने रुतरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
1: बापरे।
0: तो ये सारा इतना मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी राजस्थान उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
1: गजब।
0: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा जहां पर पूरा द्रविड डोमिनेशन है कल्चर में। तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
1: हाँ,
0: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है,
1: हाँ,
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम,
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम, तैयम का मतलब है देव,
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह,
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन है,
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्र कर रहे हैं और कोई है, उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के थे, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है, उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती।
1: इतना बड़ा है वो,
0: इतना ऊंचा है, और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है
1: ओके।
0: तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है, वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है। तो तीन महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती है, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम, और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे बाप,
0: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
1: आस्था है,
0: आस्था है उसके पीछे, इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है
1: जी।
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी, जी, जी।
0: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहां कहां है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
1: जी।
0: कि वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है, ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर।
1: एक संगम हो रहा है,
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की

0: विजुअल्स वहां के नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व थिंग
1: जी।
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलॉसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलॉसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने ये सवाल था। लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियाम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, इस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको जानकारी देते हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले आज की सभा के शेष रहे मुख्य कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हमारे पर्व मिलादुन्नबी, रक्षाबंधन, विश्वास का पर्व, घर के बड़े बुजुर्गों की बातें और बच्चों को सिखाएं जिम्मेदारियां। भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे

बालिका नाइशा और मायरा से कहानी और कविता। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00।

5:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। रात 11 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए एक नजर हमारी कल के प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन रेडियो तरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रामचरितमानस गान आप सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर। प्रातः के 6:40 पर सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम के तीन बात का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर।

प्रातः 7:20 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ दिल से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 8:45 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

बच्चों, खुशी जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, जो बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों और अपनी मुस्कान में छुपा होता है। यह मन की एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे जीवन को सुंदर और भी आसान बना देती है। बच्चों, खुशी

0: हमें पैसों से नहीं मिलती या खरीदी नहीं जा सकती, यह छोटी छोटी और सरल चीजों में हमें मिलती है। अपनों के साथ बिताया गया समय हमें सच्ची खुशी देता है। दूसरों के चेहरे पर हंसी लाना भी खुशी है। संतोष ही असली खुशी की चाबी मानी जाती है। तो आप भी खुश रहें और भी प्रयास करें कि आपकी वजह से और भी आपके परिवार के सदस्य खुशी में रहना पसंद करें। और आइए बच्चों, अब रुख करते हैं चर्चा की ओर। विषय है हमारे पर्व विशेष। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 26 अगस्त को हम मिलादुन्नबी यानी ईद मिलाद मनाने जा रहे हैं। बच्चों, आपको बताते चले हैं कि ईद मिलादुन्नबी इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने यानी रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। मुसलमान इस दिन को मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, उनके जीवन और मानवता के उनके संदेशों को याद करने हेतु इस दिवस को मनाते हैं। बात करें इसको मनाए जाने के कारण और इसके महत्व के बारे में, तो इस दिन 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में इस दिवस को खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, उनके दयालु स्वभाव, शांति और भाईचारे के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाने हेतु भी इस दिवस को मनाया जाता है। इसे मानवता का सम्मान करने का दिन और इंसानियत के लिए अल्लाह की रहमत का दिन माना जाता है। बच्चों, इस दिवस पर महफिलें मिलाद सजाई जाती है और जुलूस निकाले जाते हैं एवं दान पुण्य कर जरूरतमंदों को खाना एवं दान पुण्य दिया जाता है। और बताते चले बच्चों आपको कि आगामी 28 को हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। बच्चों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार एवं विश्वास का पर्व माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और स्नेह का महान पर्व माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं। भाई अपनी बहनों की प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उनकी रक्षा मरते दम तक करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और साथ ही साथ बहनें भी अपने भाई की लंबी आयु और सुख की कामना करती है। बात करें कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे इस त्योहार का क्या महत्व है, तो बच्चों, पवित्र रिश्ता माना जाता है यह भाई बहनों के बीच का। यह भाई बहन के बीच मीठे और खट्टे मीठे रिश्तों को और भी मजबूत करता है और आपस के विश्वास को बढ़ाने का कार्य करता है। बच्चों, राखी केवल एक धागा ही नहीं अपितु यह सुरक्षा और जिम्मेदारी का एक अटूट और जिम्मेदारी का वादा होता है। इस दिन पूरा परिवार मिलकर रक्षाबंधन की खुशियां मनाते हैं और मिठाइयां बनाई जाती है घर पर और लाई जाती है और साथ ही साथ बांटी भी जाती है और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती है। तो ये तो थी पर्व विशेष ईद मिलादुन्नबी और रक्षाबंधन पर हमारी चर्चा। और अब हम सुनते हैं नायशा एवं मायरा से कुछ कविताएं और कहानी।
1: बहुत सी प्यारी बच्ची और बहुत खुश लग रही है और लग रहा है कि बहुत ही व्याकुल है हमें कुछ ना कुछ सुनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस बच्ची का नाम और आज हमें ये क्या सुनाना चाहती है इस विषय पर जानकारी। बेटा, आपका नाम क्या है?
2: माहिरा।
1: माहिरा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो बेटा?
2: कक्षा पांचवी
1: में। आज हमारे बच्चों को आप कुछ सुनाना चाहती हो?
2: जी, कविता।
1: कविता, कौन सी कविता?
2: सबसे पहले प्यार बनाया।
1: सबसे पहले प्यार बनाया, बिल्कुल। तो फिर सुनाइए हमारे बच्चों को कविता।
2: नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। इसी प्यार से धरती, अंबर, सरिता, सागर जुड़े हुए। इसी प्यार में बरसे बादल, प्यारी पर्वत खड़े हुए। इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता, तारों की तिमतिमाहट से इससे सबका है नाता। यह हरियाली वन बागों की कलियां, सुमन का खिलना, तितली भवरों का मंदराना, एक दूसरे से मन मिलाना, सारी वसुधा प्यार से भरी हुई। सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया।
1: बहुत अच्छी कविता आपने हमारे बच्चों को सुनाई है कि नानी जी ने आपको बताया है कि इस संसार को बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर ने इस दुनिया के अंदर किन किन चीजों को बनाया है, कितना प्यारा संसार बनाया है। सागर है, नदियां हैं, तालाब हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, सभी का निर्माण करने वाले ईश्वर हैं। तो बच्चों से।

0: उम्मीद करते हैं कि उन्हें कविता बहुत पसंद आई होगी। अब हमारे साथ एक और भी प्यारा बच्चा बैठा है, तो जानते हैं इसका नाम और आज ये भी हमें क्या सुनाना चाहता है इस बारे में जानकारी। बेटा आपका नाम क्या है?
1: वंश राणा।
0: वंश राणा, वंश राणा आप तो बहुत खुश लग रहे हो बेटा, आज हमारे बच्चों को कुछ सुनाओगे आप?
1: कविता
0: सुनाओगे आप भी? कौन सी कविता सुनाओगे बेटा?
1: विनती सुनो।
0: विनती सुनो, तो बिल्कुल सुनाओ, करो विनती भगवान से।
1: विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादा, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुनगान। वीर मने हम वीर मने, पढ़ लिख कर मने महान, रोज सदैव करे भारत की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान।
0: बहुत अच्छी कविता आपने हमारे बच्चों को सुनाई, उम्मीद करते हैं कि ये कविता भी हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिलेगा। बच्चों एक और बच्ची हमारे साथ है, तो जानते हैं इसका भी नाम और हमें क्या सुनाना चाहती है। बेटा आपका नाम क्या है?
2: नायजा।
0: नायजा आप हमारे बच्चों को कुछ सुनाओगी बेटा?
2: हाँ।
0: क्या सुनाओगी?
2: कविता।
0: कौन सी कविता सुनाओगी, सुनाओ।
2: रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, इस धरती पर अक्षर लहराते हैं, पेड़ों पर बैठे पंच मीठा राग सुनाते हैं, इनके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरण चरती है। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, ऊंचे ऊंचे पर्वत नदियाँ सबकी बात निराली है, इनकी शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली है, बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती है। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती।
0: बहुत अच्छी कविता हमारे बच्चों को नायजा ने सुनाई, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। और एक और बच्ची साथ में बैठी है हमारे, जानते हैं इसका भी नाम और ये हमें क्या सुनाना चाहती है। बेटा आपका नाम क्या है?
3: माहिरा।
0: माहिरा, अच्छा आपका नाम भी माहिरा है। माहिरा आज हमारे बच्चों को कुछ सुनाओगी आप?
3: हाँ।
0: क्या सुनाओगी?
3: कहानी।
0: कहानी, कौन सी कहानी?
3: सारस और किसान।
0: बिल्कुल, तो सुनाइए हमारे बच्चों को कहानी।
3: एक समय की बात है, मक्का के एक खेत में सारस पक्षियों का एक जोड़ा रहता था, वह उनके अंडे भी थे। समय से उन अंडों में से बच्चे निकले, बच्चों छोटे थे, बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई। दोनों सारस बड़ी चिंता में थे, किसान फसल काटने आया इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों हमारे यहाँ ना रहने पर यदि कोई खेत में पास आए तो उनकी बात सुनकर याद रखना और हमें बताना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था, वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़े होकर वह देर तक देखते रहते। फिर उसके अपने बेटे से कहा कि फसल काटने योग्य हो गई है, आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वह मेरी खेत कटवा दे। सारसों ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, फसल को काटने में अभी देर है, उसके गांव के लोग उसकी फसल काटने नहीं आए, हम यही रहेंगे। दो तीन दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबरा हुए थे। वह कहने लगे, अब हम लोगों को यही खेत झटपट छोड़ देना चाहिए, आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव की लोग स्वार्थी है और मेरी फसल काटने वाले कोई प्रबंध नहीं कर सकते, कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा दूंगा। यह सुनकर दोनों सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठे और बोले, बच्चों अभी खेत नहीं कटेगा, दो चार दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, तब हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कई दिन बीत गए, अब सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय होकर हो गए थे।

0: एक दिन शाम को वह सारसों से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डरा रहा था, इसका खेत तो काटने नहीं वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटे बेटा मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी, सब कहने बनाने हैं, मेरी फसल खड़ रही है, कल बड़े सवेरे हम सूर्य आएंगे और अपनी फसल काटेंगे। यह सुनकर दोनों सारस घबराकर बोले, चलो जल्दी करो, अब अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरा नहीं हुआ, अब किसी दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों, इस बार फसल क्यों काट जाएगी? सरसों ने कहा, बच्चों किसान जब तक अपने घर वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल काटने की कहीं कोई अवश्य नहीं थी, क्योंकि दूसरे के भरोसे कोई काम नहीं होता, लेकिन जब कोई सूर्य अपना काम करने को तैयार होता है तब उसका काम नहीं रुकता। किसान जब सूर्य कल फसल काटने वाला है तब तो यह फसल अवश्य कटेगी। यह सुनकर दोनों सारस उसी समय अपने बच्चों के साथ वहां से उड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले गए।
1: बहुत अच्छी कहानी मायरा ने हमारे बच्चों को सुनाई कि जब मनुष्य निश्चय कर लेता है कि अपना काम स्वयं करना है तो वह अपने काम को कर गुजरता है, क्योंकि दूसरों पर अगर वो आश्रित रहता है तो कभी भी अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। उम्मीद करते हैं बच्चों कि कहानी आपको अच्छी लगेगी और आप इसको अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करेंगे।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: और आइए बच्चों फिर से रुक करते हैं चर्चा की ओर। विषय है बच्चों को जिम्मेदारी सिखाएं। बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने के लिए सबसे पहले उनकी माओ को चाहिए कि माताएं उनके छोटे छोटे काम उनसे करवाना प्रारंभ करें। उन्हें सबसे पहले अपने खिलौने समेटने का ही कार्य दें। फिर जब वो स्कूल से आते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों से कहे कि स्कूल बैग को खुद सही जगह पर रखने का प्रयास करें। इसी तरह से पौधों में पानी देने जैसे छोटे छोटे आसान काम भी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से करवाए। माता पिता स्वयं भी खुद अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे देख कर ही ज्यादा सीखते हैं। गलतियों पर डांटने की बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करें, उन्हें कुछ सिखाने का प्रयास करें। कुछ काम उन्हें स्वयं सौंपें, जैसे खेलने के बाद अपने खिलौने सही जगह पर रखना, सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने के लिए उन्हें कहा जाए, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद सिंक में रखने के लिए उन्हें कहा जाए। इसी तरह बच्चों को चाहिए कि कुछ काम वे अपने माता पिता को भी स्वयं देखकर सीखने का प्रयास करें और समय समय पर अपने कार्य को खुद से करना स्टार्ट कर दें। घर के कामों में एक दूसरे की मदद दें ताकि वे टीम वर्क सीख सके। उन्हें गलतियों पर सीखने का मौका दें, उन्हें डांटें कभी नहीं। जैसे अगर बच्चा पानी गिरा दे तो डांटने की बजाय उसे कहा जाए कि वे कपड़ा लेकर स्वयं उस जगह को साफ कर दे। इसी तरह से उनके छोटे छोटे फैसलों को परिणाम स्वरूप उन्हें खुद भुगतने दें ताकि वे समझदार बन सके। अगर वे गलती करते हैं तो गलती कर खुद सीखने दें ताकि वे स्वयं अपना विल पावर स्ट्रांग बना सके। अच्छे काम करने पर बच्चों को प्रोत्साहन अवश्य दें। अच्छा काम करें तो उनकी तारीफ कर उनकी पीठ को अवश्य ही थपथपाएं

ताकि उन्हें अच्छा संबोधन मिले। उनकी छोटी कोशिशों की भी सराहना करते रहें, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सके और अच्छा कार्य करने पर उन्हें जब प्रोत्साहन मिलता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो ये तो थी चर्चा कि बच्चों को जिम्मेदार किस प्रकार बनाया जाए विषय पर। और आइए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, रोटी वोटी कुछ न मिली पीछे पड़ी मोटी।
1: रे मामा रे मामा रे, रे मामा।

आइए बच्चों फिर से रुक करते हैं चर्चा की ओर। विषय है घर के बुजुर्गों की बातें, उनके अनुभवों की सौगात होती है। जी हाँ, पुरानी हो जाए लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं होती। उसी तरह बुजुर्ग लोग भी अनुभव का खजाना होते हैं। उनकी बातें और उनकी सीख जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। जी हाँ, बुजुर्गों की बातें उनके जीवन के लंबे अनुभवों का सार होती है। वे स्वयं अपने मुश्किल हालातों से सीख कर ही हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियां कर रखी होती है उनको सुधारते हुए वे हमें सही रास्ते पर चलाने का प्रयास करते हैं और उनका अनुभव ही हमारे लिए बिना मूल्य का अनमोल खजाना होता है। बच्चों, बुजुर्ग अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे हमें वही गलतियां दोबारा करने से रोकते हैं और अपनी गलतियों से हमारा बचाव करते हैं। जीवन के कठिन समय में वे हमें सही

सही और गलत का फर्क जल्दी ही समझा देते हैं और सही फैसले में हमारी मदद करते हैं। उनकी बातें मन को धैर्य और शांति प्रदान करती है और हमें आगे यह सीख देती है कि हमें संकट में भी घबराना नहीं चाहिए और संकटों से निपटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वे हमें अपनों का आदर करना और मिलकर रहना सिखाते हैं और हमें अपने संस्कारों और मूल्य का महत्व बताते हैं। हमें अपने बुजुर्गों की सीख को अपनाना चाहिए क्योंकि वे हमारे सच्चे हितैषी होते हैं एवं मार्गदर्शक भी होते हैं। उनकी सलाह हमारे भविष्य को आगे के लिए और भी सुरक्षित कर देती है और हमें गलती ना करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, उनका साथ हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है, इसीलिए कहा गया है कि घर के बुजुर्गों की बातें, उनके अनुभव हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी सौगात लेकर आते हैं। बच्चों, बातें तो हम आपसे बहुत सी करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर घड़ी पर नजर जाए तो पता चलता है कि हमारा जो समय है कार्यक्रम का वो समाप्ति की ओर है। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी दीदी तस्लीम को इजाजत। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से एफएम 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकना ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर

तरानी ने पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनियाभर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के

0: भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
4: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
3: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
5: पिज्जा MMS का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
7: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
6: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
7: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
6: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
7: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
6: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
7: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:28 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे कौन सा प्लांट है?
1: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख, तेरी समझदारी का फल।
3: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के सीईओ से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को जन सहभागिता के साथ काम करने के निर्देश। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिस से दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखे।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, कौन है इसमें, क्योंकि जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जुड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनाने हिंदुस्तान जाओ, भारत के कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं कि पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: गौरतलब है कि 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। बीती 18 जुलाई को देश की एक निजी कंपनी ने भी पहला विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत की अंतरिक्ष शक्ति को और ऊंचाइयां प्रदान की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। वहीं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर जन सहभागिता के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जयपुर में समीक्षा बैठक की। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में बारा वफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार और पर्व आ रहे हैं। ऐसे में आमजन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए, जिससे छोटी बड़ी जानकारी समय पर मिल सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान के बीच रत्न आभूषण सहित अन्य उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष सुविधाएं विकसित कर जापानी कंपनियों को अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज जयपुर में जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उद्योग और निवेश को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और जापान के बीच वर्षों पुराना नाता है। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिलकर तकनीक और निवेश के साथ रत्न आभूषण व्यापार को और आगे लेकर जाएं। इससे व्यापार बढ़ने के साथ ही रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान की 180 कंपनियां राजस्थान में काम कर रही है। बैठक में जापान के कोफू सिटी मेयर युईची हिगुची ने राजस्थान सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और यहां उपलब्ध निवेश अवसरों की सराहना की। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। श्री मेघवाल ने कहा कि बीमा और मुआवजे से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए अधिक समन्वित ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि 1857 के विद्रोह से जुड़े वाल्मीकि समुदाय के नायक गंगू बाबा की प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक विकसित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी है। भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। 309 स्थानीय निकायों में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। प्रत्याशी 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन का समय शेष रहते प्रमुख पार्टियों का टिकट लेने के लिए प्रत्याशी जोर शोर से दमखम दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता है, वहीं बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर है।
कल श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर प्रदेश भर में शिवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उल्लास देखा जा रहा है। तड़के से ही शुरू होने वाला बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे कल अपने पूरे परवान पर रहेंगे। पवित्र सरोवरों

0: से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्राएं भी जोर शोर के साथ चल रही है। झुंझुनू जिले के लोहारगल स्थित प्राचीन कुंड से जल शेखावटी क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज के मंदिरों तक पहुंचाने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं। जयपुर की गलता सरोवर, बीकानेर के श्रीकोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम के जल को भगवान को अर्पित करने को लेकर लोगों में उत्साह बनाया हुआ है। नागौर में आज निकाली गई कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शक्कर तालाब से शुरू हुई यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आमजन ने सरोवर का पूजन कर जल संरक्षण की शपथ ली।
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कांवड़ लेकर शामिल हुए। यात्रा विजयवल चौक, दिल्ली गेट, ए रोड और गंद चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन, भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज मेवाड़ के एकलिंग जी महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इससे पहले उदयपुर दौरे में राज्यपाल ने मथाता स्थित मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पैनोरमा का अवलोकन किया। राज्यपाल ने बप्पा रावल को भारतीय इतिहास का महान योद्धा बताते हुए सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में आज बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने पौधों की आरती उतारी और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र में हाल ही में जन्मी बेटियों की माताओं ने कन्याओं के नाम पौधे भी लगाए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली में शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से ब्लू प्लेनेट प्रश्नोत्तरी और कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले भर के विद्यार्थियों ने पर्यावरण, पृथ्वी और जल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी भावनाओं को कला के जरिए व्यक्त किया। विजेताओं को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापत्तनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के सीईओ से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जनसहभागिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले की चिट्ठी की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही प्रतापगढ़ जिले के नगर परिषद और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ श्रेणी के लाइसेंसधारी शस्त्रधारियों से हथियार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित हथियार

निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव का काम पूरा होने के बाद हथियार वापस किए जाएंगे। चुनाव को लेकर जिले के नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। 19 अगस्त से 22 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति हथियार लेकर चलने और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। बिना पूर्व अनुमति के सभा, धरना, रैली, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार में पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिंग, लाउडस्पीकर और वाहनों के उपयोग के लिए भी निर्धारित अनुमति जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और डीजे पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग देने की अपील की है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर शुभम चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी दलों से नियमों का पालन करने और चुनावी गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमतियां लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय समारोह गरिमा और उल्लास के साथ आयोजित हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब समाज के हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और आगे बढ़ने के अवसर मिले। समारोह में परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण भी हुआ। इसी कड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक शाम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को मतदाता जागरूकता, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। स्वीप एम्बेसडरों ने छात्राओं को जागरूक किया। पिछले दिनों हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अभियान के तहत नगर परिषद परिसर में जिला स्तरीय तिरंगा प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां तिरंगे के इतिहास, स्वरूप और राष्ट्रीय महत्व की जानकारी दी गई। अधिकारियों और आमजन ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। धमोतर पंचायत समिति में तिरंगा मेले के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, जिससे देशभक्ति के साथ ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और आत्मनिर्भरता का संदेश भी सामने आया। प्रतापगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक जिला एक उत्पाद थेवा विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। युवाओं को ODOP, MSME, एक्सपोर्ट पॉलिसी तथा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के विद्यालयों और नर्सिंग महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक और मानसिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। विद्यालयों में शिकायत पेटी लगाने की पहल भी की जा रही है। सावन के महीने में जिले भर में जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और सोमवार के दिन शिवालयों में जलाभिषेक और सहस्त्र घट के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। श्रावण के पहले सोमवार को प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने भगवान शिव का अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पहले आजरी खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप्स भारत माए विश्वास जतायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे प्रमुख कंपनियां रा सीईओ सू चर्चा करी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका प्रदेश माए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेट समीक्षा बैठक ली। पहलकारा

0: जन सहभागिता रे साथे काम करने रा हुकुम दिया। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दड़ा माए उम्मीदवारा ने लेर मंथन तेज व्यो और श्रावण महीना रा अंतिम सोमवार माथे काले शिवालया माए भोलेनाथ रा अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए उछास। पवित्र सरोवर सु कावड़ लाने रो सिलसिलो जारी है। समाचार के साथ मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप सरकार माए आपरो विश्वास जतायो है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रे मौके माथे प्रधानमंत्री अंतरिक्ष खेतर रे स्टार्टअप्स रे मुख्य कार्यकारी अहलकार रे साथे चर्चा करी। प्रधानमंत्री रोजाना जतन करे और अंतरिक्ष खेतर रा एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने री अरज करता हुआ कहो कि एड़ो अनुकूल माहौल बनायो जानो चाहिए जिनसु दुनिया भर रा लोग अंतरिक्ष खेतर माए आपरो करियर तलाशने खातिर भारत ने पसंदीदा गंतव्य रूप
1: में देखे। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को यहां जुड़ना है। हमें ऐसा एक ऑनर खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं कि पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: ध्यान जोग है कि 2023 माए आज ही रे दिन भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 रे चंद्रमा रे दक्षिणी ध्रुव माथे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग री याद माए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनायो जावे है। आ उपलब्धि हासिल करने वालों भारत दुनिया रो पहलो देश हो। बीती 18 जुलाई ने देश री एक निजी कंपनी भी पहलो विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर रही अंतरिक्ष शक्ति ने और ऊंचाइयां माथे पहुंचायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह देशवासियों ने शुभकामनावां दी। श्री राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट माए कहो कि अंतरिक्ष अन्वेषण माए भारत री उल्लेखनीय उपलब्धियां देश री वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार री भावना ने आगे बढ़ाने रे पक्के संकल्प रो प्रमाण है। प्रधानमंत्री आपरे संदेश माए कहो कि नवी वैश्विक व्यवस्था माए भारत लगातार आपरे अंतरिक्ष क्षेत्र रो विस्तार कर रियो है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो कि चंद्रयान 3 री ऐतिहासिक उपलब्धि रे साथ ही भारत अंतरिक्ष रा क्षेत्र माए अग्रणीय देशा माए भेड़ो वैग्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका अहलकारा ने प्रभावी कार्य योजना बना जन सहभागिता रे साथे काम करने रो कहो है। मुख्यमंत्री प्रदेश में कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेर जयपुर में समीक्षा बैठक करी। श्री शर्मा कहो कि आवन वाला दिनामाए 12 वफात रक्षाबंधन जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जड़ा मोटा त्योहार और पर्व आ रिया है। एड़ा माए आम जन रे साथे आपसी समझ पक्की करी जावे जिनसु छोटी बड़ी जानकारी बकत माथे मिल सके और जरूरी कार्रवाई पक्की करी जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत समेत उच्चाधिकारी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान रे बीच रत्न आभूषण समेत दूजा उद्योगों रे विकास खातिर रोड मैप बनार काम कर रही है। बना कहो कि खास सुविधाएं विकसित कर जापानी कंपनियां ने अनुकूल माहौल मुहैया करवायो जा रही है। आज जयपुर में जापान रे प्रतिनिधि मंडल साथे उद्योग और निवेश ने लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कहो कि राजस्थान और जापान बीच बरसों पुराना नातो है। श्री शर्मा कहो कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिलर तकनीक और निवेश रे साथे रत्न आभूषण व्यापार ने और आगे ले जावेला। इनसु व्यापार बढ़ने रे साथे ही रोजगार रा भी बत्ती उम्बत्ती मौका बनेला। मुख्यमंत्री बतायो कि जापान री 180 कंपनियां राजस्थान में काम कर रही है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि सफाई रे काम माए मानवीय श्रम ने कम करने और मशीना रे बत्ती इस्तेमाल री जरूरत है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रे स्थापना दिवस जलसा माए वना कहो कि सफाई कर्मियों रे खातिर सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। श्री मेघवाल कहो कि बीमा और मुआवजे से जुड़ी योजनावां ने एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों रे कल्याण खातिर संबंधित ढांचो तैयार करने री जरूरत है। घोषणा करी कि 1857 रे विद्रोह से जुड़ा वाल्मीकि समुदाय रा नायक गंगू बाबारी प्रेरणा ने जन जन तक पहुंचाने रे

0: કરશું, એક રાષ્ટ્રીય સ્મારક વિકસિત કર્યો જાવેલા. એ ખબર આપ આકાશવાણી જયપુર અજમેર સુન રહ્યા હો. प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में लीड सरगर्मियां बदल लगी है. भाजपा और कांग्रेस समेत प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों ने लीड मंथन तेज कर दिया है. 309 स्थानीय निकाय में दो चरण में वोट डालिया जावेला. पहले चरण रो मतदान 9 सितंबर ने वेला वठी ने 11 सितंबर ने दूजे चरण री वोटिंग वेला. प्रत्याशी 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पानो दाखिल कर सकेला. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन रो वक्त बाकी रहो है. प्रमुख पार्टियां रा टिकट लेने खातिर प्रत्याशी जोर शोर से दमखम दिखा रिया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि आ चुनाव में 1,44,00,000 सुबत्ती वोटर आपरे मताधिकार रो प्रयोग कर सकेला. जयपुर नगर निगम में सबसे बत्ती मतदाता है, बठीने बूंदी रे इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर है. काले श्रावण मास रो अंतिम सोमवार है. इन मौके माथे प्रदेश भर में शिवालय और मंदिरा में भगवान भोलेनाथ रे अभिषेक ने लीर श्रद्धालुओं में खासो उछास देखो जा रियो है. तड़के सु ही बम बम भोले और हर हर महादेव रा जयकारा काले आप रे पूरे परवान माथे रेवेला. पवित्र सरोवरा सु पानी लार भगवान शिव ने चढ़ायो जामन खातिर कावड़ यात्रा मां भी जोर शोर रे साथे चाल रही है. झुंझुनू जिला रा लोहारगल थापित प्राचीन कुंड सु पानी सेखावाटी खेतर रे साथे साथे दूर दराज सु मंदिरा ताई पहुंचावन खातिर कावड़िया पूग्य रहे. जयपुर रा गलता सरोवर बीकानेर रे श्री कोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम रे जल सु भगवान शिव रे अभिषेक करण ने लेर लोगा माए उछास बनेड़ो है. नागौर माए आज निकाली जी कावड़ यात्रा माए हजारा री तादाद माए श्रद्धालु भेड़ाव्या. तालाब सु शुरू हुई यात्रा रो जगह जगह स्वागत करियो गयो. आमजन सरोवर रो पूजन कर जल संरक्षण री शपथ भी ली.
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कावड़ लेकर शामिल हुए. यात्रा विजय वल्लभ चौक, दिल्ली गेट, ए रोड और गंद चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया. मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कावड़ियों का स्वागत किया. इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया. मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन, भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए. श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर.
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज मेवाड़ रा एक इंजी महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करी. उन पहले उदयपुर डोरे में राज्यपाल मथाता थापित मेवाड़ रा संस्थापक बप्पा रावल री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित कर पैनोर मारो अवलोकन करियो. राज्यपाल बप्पा रावल ने भारतीय इतिहास रो महान योद्धा बताता तका सगड़ा ने वाणी जीवन सु प्रेरणा लेवन रो हेलो करियो. राजसमंद जिले रा पीपलात्री गांव में आज बेटियां पेड़ा ने राखी बांधर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो. इन चालता लोगा पौधारी आरती भी उतारी और वाणी सुरक्षा रो संकल्प भी लियो. कार्यक्रम में क्षेत्र में हाल ही में जन्मी बेटियां री मातावां ने कन्यावारा नाम भी पौधा लगाया और कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियां समेत बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद रहा. संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत रे लक्ष्य ने हासिल करने और भारत ने 45 अरब डॉलर री अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनावण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला. आज अहमदाबाद में तीजे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जलसा में वणा कहो कि अंतरिक्ष क्षेत्र रा सुधारा सु स्टार्टअप और उद्योग जगत खातिर मौका बढ़िया है. कार्यक्रम में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रा निदेशक वी एन राव भी मौजूद था. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया स्वस्थ जीवन शैली साइकिल चलाने आपरी दिनचर्या में भिड़ो करने की अरज करी है. डॉक्टर मांडविया आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम रे पाछे मीडिया सु कहो कि साइकिल चलानो फिट इंडिया आंदोलन रो खास हिस्सो है. और अब अंत में खास समाचार एक फिर सुनो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो अंतरिक्ष क्षेत्र रा स्टार्टअप्स भारत में विश्वास जतायो. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे प्रमुख कंपनियां रा सीईओ सु चर्चा करी. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेट समीक्षा बैठक ली. अहलकारा ने जन सहभागिता रे साथे काम करने रा हुकुम दिया. प्रदेश में नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़ी. भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों ने लेर मंथन तेज हुयो और श्रावण महीना रा अंतिम सोमवार माथे काले शिवालय में भोलेनाथ रा अभिषेक ने लेर श्रद्धालुओं में उछास.

पवित्र सरोवरों कावड़ लाने रो सिलसिलो जारी है। इंद्र साथे ही प्रादेशिक समाचारारो ओ बुलेटिन अटे ही पुरुवियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

0: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
0: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
0: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
2: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आप सुन रहे थे राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: समाज वास्तव में प्रगतिशील केवा है। तो किसान भाइयों, अपनी जिम्मेदारी है कि आपने मिली एक स्वस्थ समाज अपने निर्माण करव, जेना हर बेटी सुरक्षित रहे ने हर बेटी ने महिला ने सम्मान मिले ने हर महिला जो है ये आपड़ा जो सपना है इनने पूरा करी पाए ने इने सपना पूरा करवा हरू समान अवसर मिले। आनी बात नू आपड़ा सबने ध्यान रखू है। किसान भाइयों, आनी साथे आपने जानिया कि अभी बरसात नो मौसम है ने शारा मेर हरियाली थी रही है, पौधे पनपी रहे हैं, जीव पनपी रहे हैं ने हाथे हाथे बीमारियां भी पनपी रही हैं। तो किसान भाइयों, आज ये मौसम है, आ पनपवाना मौसम है, आणमी अच्छाइयां भी पनपी रही हैं ने हाथे हाथे पनपी रही हैं। अच्छाइये सब अच्छाइये पनपी रही हैं, पर कोई अच्छाइये जो है ये आपरे वास्ते नुकसानदायक भी है। केवानो मतलब बीमारी ना रूप में आपने कने आवे तो आपने अंत की बचवू भी है। तो एवी बीमारी थकी बचवा हारू आपने हूँ सावधानी राखी शक एने माते जे मारी बातचीत थई है नर्सिंग ऑफिसर अजय सोनी थकी। तो एने बीमारी थकी बचवा ने बारा में आपने हूँ बताड़ियो ई आपने सब मिली ने हमर ने पसे बीजा विषय माते आपने आगळी वात करंगा।
1: राम राम साहब, आप अजय सोनी नर्सिंग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करजी ब्लॉक बागीदोरा में कार्यरत हो नर्सिंग में पद माते। तो मने अजय जी एक बात जाननी है कि गामन में ने शहर में सब जगह माते आना मौसम में जो बीमारी थई रही है तो खास करीने आना मौसम में बीमारी वधर थवे ने हुं कारण है?
2: आना में होता है साहब के प्रकृति में सब चीजें आ बारिश ना मौसम में उत्पत्ति थाय, पेड़ पौधे भी दिखिले तने मोटा थाय, बीमारी भी आना मौसम में वधारे थाय, क्योंकि पानी तक ही हर जीवन में उत्पत्ति थाय, बीमारी भी पानी तक ही उत्पन्न थाय, पानी वाला काय नहीं थाय। तो आने में आर्द्रता वधारे रहे मौसम में पानी दूषित थी जाए, मच्छर थी जाए, मतलब पैदा होने तक टेम्परेचर तापमान तमारे एकदम तक बदलाई जाए, कारक ताप मिली जाए, कारक पानी पड़ी जाए, तो यही सब कारणों तक बीमारी वधारे थे। मेन एना में हो कि दूषित पानी जो पीवा की वधार थे पसे हो आद्रता वही जाए में जो इन्फेक्शन पैदा थे बीमारी पैदा थे मतलब वायु में ये सब वधार थी जाए मौसम में। तो वही मतलब मेन कारण ये कि आप बीमारी में मौसम एम तो समझी नहीं सालो कारण में तब ध्यान में रखोगा तो सही दिक्कत वालों काम थी जाए मौसम में खावा पीवा हर चीज हर बात ध्यान रखो पड़े पड़े।
1: अच्छा, तो कुल मिलाई आपको कहूँ है कि मौसम में बदलाव एक तो मोटो कारण है ने आ दूषित पानी ये भी एक कारण है ने खावा पीवा ध्यान रखो साफ सफाई रखी आ सब चीजों जो है एक बीमारी ना कारण है।
2: अगर हमें सब तो की मुठी बात तो ये आजकल जो बीमारी फैली हुई है इनमें एक तो दूषित पानी पीवा तो की कोई सर्दी जुकाम वालों वायरल बीमारी है हवा में फैले आ बे बीमारी वधारे फैली हुई है। तमारे पानी जो पीवा है या तो तमारे आरो न हो तो ठीक है, नहीं हो तो पसे पानी गरम करीने इन्हें यूज करो, तमे मतलब गरम करो उसके बाद उस पानी को पियो तो आज सब बीमारी तमने नहीं थेगा ठीक है। और आ वायरल बीमारी जो खास कर टाट सड़ी ने बुखार सड़ी रहे लोगों ने सर्दी जुकाम हो खास कर वधारे थी गई लोगों ने, तो भाई जेने भी थी रही है तो थोड़े डिस्टेंस रखो ए तो दूर रहो मास्क वगैरह यूज करो तो अर्धी बीमारी आमज तमारे मटी जाएगा।
1: कुल मिलाव बचाव भी
2: बचाव ही उपचार है मेन तो यही से पैसा थी गई बात तो हूँ करी सको तब
1: आना मौसम में जो बचाव करेंगे तो इनमें अर्धी बीमारी थी कितनी बची जाएगा ने इनमें साफ शुद्ध जल स्वच्छ भोजन साफ सफाई ने मास्क न प्रयोग ने आम थकी बीमारी थकी बची सके। तो मैंने एक बात अच्छी बताओ कि आना मौसम में जो है ये वधारे करीने कोई बीमारी थी गई
2: आना मौसम में तुम्हारे पेट संबंधित बीमारी वधारे थे क्योंकि दूषित पानी वधारे पीवामां आवे तो एन थकी पेट ने संबंधित बीमारी घनी थी आना मौसम में दस्त उल्टी थी जाए टाइफाइड अभी भी घनी तरह बीमारी आना मौसम में थी गई लोगों ने। तो हुई पानी में मेन कारण है इनमें एना अलावा हो है कि पेट आप जो मच्छर वाली बीमारी है मच्छर भी वधारे थे पानी ना मौसम में तो एक तो मच्छरों ने भी ध्यान रखो पड़े ने मच्छर संबंधित जो भी अपने करी सको ये सब अपने करव पड़े डेंजी आए नाखी भी सही दवाई आए तो सब ठीक है। मच्छर वाली आजकल एटले पेलो वधारे नहीं पर हुई भी एक समस्या है अटली नहीं आना में फिर बीजी हो स्किन संबंधित समस्या भी घनी थी दावा दवा साफ सफाई हर बात में ध्यान रखो तो नहीं तो हर रोग आने तुम्हारे वधारे थे बारिश ना मौसम में।
1: अच्छा, તો એમને મતલબ અમને કોઈ એવી કોઈ બીમારી જેમ થઈ જાય, એમને કોઈ બીમાર થઈ ગયું કે સમજી લો કે બુખાર આવી ગયો, કઈ આવી ગયો, તો એને તરત ઉપચાર લેવા જવું જોઈએ?
2: હા, વાત બરાબર હોય, કેને ભી કાંઈ ભી થઈ જાય તો તુરંત ઉપચાર જરૂરી છે, એમ ડોક્ટરને બતાવવું જરૂરી છે, ને જે ભી લખીને આલે દવાઈ ટાઈમ ટુ ટાઈમ.

अरे सतगुरु जो घी जुगत में अरे मुकत स्वरूपी हंस हरि राम का गा मिला रे तुरत बदलिया वंश।

किसान भाइयों देखो केटलू बढ़िया भजन आप हम हम बात करेगा किसान भाइयों आप खरीफ नी फसले किसान भाई उगाड़ी रखी बारिश नो मौसम शुरू थाते खेतर ने में हरियाली देखावा लगी कि किसान भाई धान मक्का सोयाबीन बाजरा कपास मूंग उड़द जीवी खरीफ नी फसल नी उगाई कर दी दी है पर किसान भाइयों फसल ने अच्छी पैदावार खाली बुवाई मत निर्भर नहीं करे समय ने मत यानी देखभाल फसल ने जो है मजबूत बनावे उत्पादन बढ़ावाने में भी मदद करे। सबसे पहले अपने बात करें खेतर ने में नमी ने जल निकास नहीं बारिश नो मौसम है खेतर ने में जरूरत थी कि वधर पानी जमा थी जाए तो ये फसल ने वास्ते नुकसानदायक थी सके એટલે ખેતરને પાણીની નિકાસીની ઉચિત વ્યવસ્થા રાખવી પડેગા લગાતાર બારિશ થાયગા તો આપણને ખેતરનું નિરીક્ષણ કરતા રહેવું પડેગા હવે વાત કરો આપણે કે ખરપતવાર નિયંત્રણની ખરપતવાર ફસલ જે હે એને હાથે પ્રતિસ્પર્ધા કરે પાણી વાસ્તે પોષક તત્વ વાસ્તે ધૂપ વાસ્તે એટલે સમય માટે નિરાઈ ગુડાઈ કરવી खूब जरूरी है आवश्यकता अनुसार कृषि विशेषज्ञ इनकी सलाह थकी अपने उचित खरपतवार नाशी नो प्रयोग अपने करी शका ताकि खरपतवार नो जो है ये नियंत्रण थी जाए फसल नी नियमित निगरानी खूब जरूरी है देखते रहो इन्हें खेतर ने मैं अपने फरी फरी ने पौधे हैं इनकी पत्तियां हैं तना है जड़ है इनमें अपने ध्यान थकी देखो है पत्ती अनु रंग बदलाई तो नो पत्ती में के छेद तो न दिखाई रहा कि पौधो जो है ये मुरझाई तो नहीं रही है या पसे कीटन जो संख्या है ये वधी गई हो तो आ कोई समस्या नो संकेत थी सके एटले अपने खेतर नो निरीक्षण बराबर टेम टेम करवू है ने આવી સ્થિતિમાં વના જાણકારી આપણને દવાનો પ્રયોગ નથી કરવો દવાનો પ્રયોગ આપણને કૃષિ વિભાગ યા પછી કૃષિ વિશેષજ્ઞની સલાહ લઈને અગર આપણે કરંગા તો એ આપણા વાસ્તે બહેતર રહેગા કીટ ને રોગ પ્રબંધન આપણને એકીકૃત કીટ પ્રબંધન અપનાવંગા તો એ આપણા વાસ્તે લાભદાયક રહેગા ખેતરની નિયમિત નિગરાની કરવી

जेवड़ा कीट या रोग आर्थिक नुकसान की सीमा तक पहुंची जाए तो अपने जो दवा अपने बताड़ी है या जो उपाय अपने बताड़ो है एना उपाय ने अपने अपनावांगा। दवा नो प्रयोग करते समय अपने इनी सही मात्रा सही समय ने सुरक्षा सावधानियों ध्यान रखू है।

करूंगा, तो जरूरी नहीं है कि एम थकी उत्पादन वधारे थायेगा। ये कोई उत्पादन वधारे थवानी अपना जाना के वधारे खाद नाखूंगा तो उत्पादन वधारे थायेगा, बल्कि एवं भी थी सके कि फसल ने मिट्टी बे ने नुकसान थी जाए। किसान भाइयों, खरीफ फसल नी देखभाल अपने कोई एक दाड़ा नू काम तो है नहीं। बारिश, खेतर नी नमी, खरपतवार, कीड़ा, रोग ने फसल नी बढ़वार आनी सब बातों माते अपने नियमित नजर राखव खूब जरूरी है। कृषि कार्य करता टीम में अपने सुरक्षा नु भी ध्यान रखू है। कीटनाशकों प्रयोग करता टीम अपने दस्ताना है, मास्क है, ने आवश्यक जो सुरक्षा ना उपकरण है इनो उपयोग करवो है, ने जो कीटनाशक दवाए है इनने अपने बच्चा है, पशु है, इनने थकी दूर रखू है। तो आना खरीफ ना फसल ना मौसम में अपने फसलों नियमित निरीक्षण करवो है, ने वैज्ञानिक कृषि तकनीक ने अपनावू है, ने मौसम ने अनुसार समय माते आवश्यक अपने प्रबंधन करवो है। किसान भाइयों, आ तो थी अपने खरीफ नी फसल में देखभाल नी बात। अवे जाते जाते एक बढ़िया सो भजन हमरा ने पसे आपने विदा लंगा।

अभय किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
1: खेती बाड़ी सुन बड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम और अभिलाषा जी आपने भी राम राम।
2: घनी घनी राम राम महेश भाई, आपने भी कार्यक्रम सुन रहा सगला किसान साथियों ने भी मारी और सुन घनी घनी राम राम सा।
1: हाँ अभिलाषा जी, देखो जो का किसान भाई ही वह खेती और बागवानी दोनों करे हैं, तो खेती के मायने अपना किसान भाई फसल उगावे हैं और भी के साथ साथ में बागवानी का माये फलदार पौधा भी हुए हैं, शाक सब्जी भी हुआ है
2: जी।
1: तो कोई भी फसल हो किसान की भी कमाए अपा देखा है कि कई प्रकार का कीट भी लाग जाए ही, जैसे कि रस चूस वाला, फली छेदक और कई प्रकार का कीट रोग लाग जाए ही
2: जी।
1: वहाँ पर यदि समय रहता जाप तो न किए जाए, नियंत्रण न किए जाए, तो जो उत्पाद है, जो फसल है, बिने काफी नुकसान पहुंचा सके
2: जी साहब। और देखो कीट और रोगों से बचावा के तनी अपना किसान साथी बहुत सारे ऐसा जैविक उपाय भी करे छे, जैविक उपायों के साथ साथ वे करे छे कि जो रसायन होवे छे वाने भी काम में लेवे छे।
1: तो
2: देखो साहब, जो अपना रसायन होवे छे कीटनाशी रसायन वाने काम में लेबो कि भाई अपनी फसलों ने बचावो भी जरूरी है, पर याने काम में लेता समय, काम में लेबा से पहले, काम में लेता समय और काम में लेबा के पाछे कुछ ऐसी लापरवाही कर दे छे कि जहाँ से अपने फायदा होबा की जगह नुकसान हो जावे छे। तो अपना किसान साथियों ने छोटी छोटी सावधानियां और छोटी छोटी बातें आशी होवे छे जाने ध्यान रखबो बहुत जरूरी छे।
1: बिल्कुल, देखो दवाई को आपा छिड़काव की बात है कि मुझे कि अपनी फसलों का मैं जो आपा कीटनाशक रसायन को छिड़काव करा हाँ दवाइयों को, तो आपने लेके इकट्ठे आनी है बाजार में, जो को ये दुकानदार जो को प्रमाणिक है, जिके लाइसेंस है, भट्ठे से आपा लेके आवा और साथ में बिल जरूर लेके आवा दवाई को
2: जी।
1: और डब्बे ने ध्यानपूर्वक विपद का दिशा निर्देश लिखेड़ा रहे की मात्रा में की प्रकार से छिड़काव करना है, और जो अपना कृषि विशेषज्ञ सलाह देवे सिफारिश करें कि भी ये फसल में ये कीट रोग के लिए ये अतरी मात्रा में छिड़काव करना है तो भी के अनुसार ही करना चाहिए
2: जी। और देखो सर, दूसरी चीज यह है कि अपन जब कीट और जो ये अपने दवाइयां ने काम में ले रहा है अपना खेत में, तो वाने काम में लेबा को भी एक निश्चित समय हुए छे कि भाई सुबह काम में लेना चाहिए, शाम ने काम में लेना चाहिए, तो वाने उनके ही हिसाब से आपका काम में लेवा समय को विशेष ध्यान रखा और जो भी दिशा निर्देश वहाँ डब्बा पे दिएड़ा छे वाने नीका तरी पड़ फिर ही वाने काम में लेवा।
1: बिल्कुल, सुबह और शाम के समय हवा की दिशा में छिड़काव करना चाहिए, न कि हवा की विपरीत दिशा में, कि हवा तेज चल रही है और विपरीत दिशा में चल रही है और आप छिड़काव कर रहे हो, तो वो आपके शरीर पर आ जाएगा और

0: अच्छा नवे की भी देखो जो पूरो एक किट हो जी का मैं आपका देखा है कि छिड़काव से पहले पूरी एक ड्रेस पहननी हो जी का मैं हाथ कमाए दस्ताना पैरें कमाए जका जूता और आंखा का ऊपर चश्मा हो सिर बिल्कुल ढकेड़ो रहना चाहिए और हाथ कमाए दस्ताना हो गया और मुंडो भी कोई मास्क या फिर कपड़ा सी जो है ढाटो लगा के मुंडे ने भी बंद कर लेना चाहिए
1: जी। और देखो सर या तो अपना पहले छिड़काव करते समय सावधानी रखे छिड़काव करवा के पास है जो भी कपड़ा आप उस समय पहन रखे छे वाने अच्छा साबुन का गोल में डुबो थोड़ी देर रखकर फिर वाने दूर तेज धूप में सुखा देना चाहिए जी। एक साथ साथ यह ध्यान रखा कि जब भी आप छिड़काव या बुरकाव कर रहे अपनी फसल में उस समय कोई भी खावा पीवा की चीज आपके काम में न लेवा। अपना किसान साथी कोई धूम्रपान भी करे छे कोई और भी चीजें यदि खावा की पीवा की काम में ले रहा छे तो उस समय यह चीजा को निषेध रखे।
0: बिल्कुल बीड़ी तम्बाकू को सेवन छिड़काव के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए मुंडो ढकेड़ो रहे और जबकि कोई दवाई घोल बच गयो है डब्बा कमाए तो बीने जो है ऐसा खुल्लो बचार में रखनो जो को खाडो खोद के और भी कमाए फिर गेर के बिनो बूर देनो चाहिए
1: जी। और देखो सर सबसे बड़ी जो गलती करे छे अपना किसान साथी भाई या करे छे कि जो भी दवाई वे काम में ले रहा छे दवाई काम में ले रहा हो तो वो डिब्बा में वो दवाई की मात्रा कम हो जाओ छे तो वे लोग सोचे छे कि भाई ये इतनी सी दवाई बची छे तो इन्हें कोई और डब्बा में रख देवा। तो देखो सर यह गलती ना करे जो भी दवाई छे उन्हें उनका ही डब्बा में रहे चाहे छरासी दवाई बची छे पर डब्बो उनको न बदलना चाहिए क्योंकि कई बार आप देखा छे कि कोई शीशी कोई डब्बो ऐसा हो छे कि जिमें आप खावा पीवा की चीजा भी आव छे और उन्ही डब्बा में यदि आप वहां दवाया ने रख दिया भूल चूक में यदि वहां आप काम में ले लिया या कोई सी भी ऐसी लापरवाही होगी तो देखो सर जान माल की हानि हो सके छे।
0: बिल्कुल और डब्बा की सही बात है कि जो डब्बा हुए हैं तो कई बार लोग यहाँ कर ले हुए हैं कि भी डब्बा खाली हो गया थोड़ा सा धो लियो कर लियो और फिर मैंने कोई नहाना धोना का ये प्रकार से काम में बिल्कुल नहीं लेना है दवाइयों का रसायन का डब्बा आपने ये प्रकार से काम में वाने नष्ट कर देना ही
1: जी। और इनके साथ साथ यह भी ध्यान रखा कि आपने जो बालक टाबर है बाकी पहुंच से आप दवाया ने दूर रखा अपना जो जिनावर से वाने भी आप यहाँ ध्यान रखा कि जी समय आप छिड़काव बुरकाव कर रहे हैं अपना खेत में तो वे जिनावर अपने खेत के आसपास न रहे
0: पालतू पशु बिल्कुल दूर रखा और टावरा ने भी जो दवाई की पहुंच से दूर रखना चाहिए
1: जी।
0: तो यह इस प्रकार की जरूरी बात है कि भी कीटनाशी रसायन को जब आप छिड़काव करा तो जो विशेषज्ञ बाकी सिफारिश के अनुसार और दिशा निर्देश देख के फिर ही करना
1: जी। और इनके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो भी यंत्र आप काम में ले रहा था छिड़काव और बुरकाव के तो वाने काम में लेबा से पहले वहां की जांच कर लेवा और काम में ले जाकर लेबा के पाछे वहां की निकटतरी सफाई कर वहां का नोजल वगैरह साफ कर फिर ही वाने रखा कि जिसे आपने जो काम में यदि आप वहां उपकरण ने ले रहा है तो उस समय आपने कोई नुकसान न उठाना पड़े।
0: बिल्कुल नुकसान को नहीं उठाना पड़ेगा। तो अब आपने तो बात चेता हुई
1: जी
0: तो एक चोको सो लोगीता पर सुन लिया।
1: बिल्कुल सुना सर।

0: बंदा राख बड़ो विश्वास। सावर में सबल की आवाज में लोकगीत तो बहुत चोको सुनाये हो भाई लोगों ने
1: जी।
0: तो और अभिलाषा जी, तो अब जानकारी की बात करा तो जैव प्रौद्योगिकी पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता। तो दिरावा जानकारी किसान साथियों, देखो जानकारी देवा के वास्ते अपने बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता। आप प्रोफेसर हैं पादप कार्यकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप पधारी हैं और आपसे आज जानकारी लेवेगा जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो डॉक्टर सुनीता जी स्वागत है आपको, राम राम।
2: राम राम किसान भाई, राम राम।
0: सबों पहले तो जो को मौका किसान भाई बहनी आना यह बताओ कि देखो जैव प्रौद्योगिकी ई विषय पर बात कर रहे हैं तो वो कहीं है सब।
2: किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी एक वैसी क्या विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो जीवों और जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे कि जीन होते हैं उनको हम जो साइंटिस्ट होते हैं उसको यूज कर करके किस तरह से इनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर लेते हैं और किस तरह से ये सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं या समाज कल्याण के लिए हितकारी होते हैं। तो ये जैव प्रौद्योगिकी की एक बेसिक साइंस की जो है ब्रांच है जिसमें सभी शाखाओं जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है, इनका सभी का सम्मिलन होता है।
0: जी साहब, ये तो परिचय। और आप खेती किसानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब यह बताओ कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इको कृषि में क्या इतिहास रहे है?
2: जैव प्रौद्योगिकी की जो का इतिहास जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में जो लोग थे इसका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे खमीर के रूप में, ब्रेड और शराब बनाने के रूप में करते थे। लेकिन जो इसकी विधिवत शुरुआत हुई है वो 20वीं सदी के अंत में हुई थी जब डीएनए की संरचना को हमने जान लिया था और जीन ट्रांसफर की जो तकनीक है उनको हमने विकसित कर लिया था। सबसे पहले 1983 में जो है ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनका परीक्षण किया गया और सन 2014 में पहला ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आया था जिसको कि हम जानते हैं टमाटर का फ्लेवर सेवर टमाटर। और इसकी जो क्वालिटी क्या होती है कि ये एक जेनेटिकली या जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है और इसमें जो शेल्फ लाइफ है मतलब इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने दिया था, उसके बाद भारत में 2002 में बीटी कपास आया था। तो तब से ही ये जो है इसका जो है प्रचलन चालू है जैव प्रौद्योगिकी का और अभी तक इसकी शुरुआत जो शुरू प्राचीन समय से चली आ रही है वो अभी तक कायम है।
0: डॉक्टर साहब, ये जो की जीएम फसल है या कहीं हुआ है और इसका लाभ के ही?
2: किसान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जीएम फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कि किसी अन्य स्रोत से, चाहे हम उसको बैक्टीरिया से लें या किसी अन्य प्लांट से लें, किसी अन्य जीव से लें, उनके जीनों को हम जो कि किसी वांछित करेक्टर्स के लिए, वांछित गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीएम फसल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है बीटी कपास और जिसमें एक जीवाणु होता है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, उसमें जो स्थित जो जीन होता है उसके द्वारा बीटी कपास को कीटरोधी बनाया जाता है और ये आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो है जीएम क्रॉप है। इसके अलावा कुछ सूखा रोधी किस्में होती हैं, कुछ लवण सेंशियल किस्में भी इस तरह से जीएम क्रॉप्स के रूप में विकसित की जा चुकी हैं।
0: डॉक्टर साहब, जो जैव प्रौद्योगिकी है एक द्वारा कौन कौन सी फसलें विकसित करी गई?
2: देखो, जैव प्रौद्योगिकी के लिए कुछ किस्में विकसित कर ली गई हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण है इसका है बीटी कपास। जैसे अभी मैंने इसमें भी बताया था कि जो बीटी कपास होती है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें क्या होता है कि कपास में एक पिंक बॉल वर्म जो होता है वो कीड़ा अटैक करता है और जिससे इस फसल को नुकसान होता है। तो इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस फसल में जो क्राई जीन होता है, जो बैक्टीरिया होता है जीन उत्पन्न करता है जिसको कि हम क्राइजीन कहते हैं, उसके द्वारा इस फसल को जब ये लार्वा या जो पिंक पॉलवर्म इस फसल को खाता है तो उसके ये जो प्रोटीन है वो उसके ग्लट में जाकर के और उसको नुकसान पहुंचाता है और जिससे जो इस फसल को है कीटरोधी बनाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है जीएम फसल का वो है गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी है।

0: और इसमें जो चावल है इसमें सबसे अच्छा है कि ये न्यूट्रिटिव है, इसमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जिससे जो कुपोषण की समस्या उससे निजात मिल सके। और इसका जो चावल का जो रंग होता है वो सुनहरा होता है, इसी वजह से इसका नाम गोल्डन राइस का रखा गया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है जीएम मक्का, और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, और इसमें भी ये जो क्रॉप है ये सूखे के प्रति सहिष्णु है। तो जहां पर क्लाइमेट चेंज होता है या जहां वर्षा की कमी होती है वहां पर इस फसल को उगा करके अच्छी इनकम किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जो कि खाद्य सुरक्षा की बात आवे है तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा के खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जा सके?
0: बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि जो हमारी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और जो फूड की कमी होती जा रही है, तो ये जीएम फसलें उस सुरक्षा की दृष्टि से काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जैसे कि बीटी कपास, अब बीटी कपास के रूप में यदि हम देखें तो ये जो होती है कीटरोधी किस्में, इसके साथ साथ इसके उपयोग से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स में या इंसेक्टिसाइड में जो किसान जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो खर्च कर देते हैं उससे उसको निजात मिल सकती है। और दूसरा, जो कीटनाशकों के उपयोग से जो पर्यावरण में जो असंतुलन आता है, जो पर्यावरण में गिरावट आती है या पर्यावरण के जो संतुलन है वो नहीं रह पाता, तो इसके उपयोग से इससे भी हमें बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो उदाहरण के लिए यदि हम बताएं कि किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, तो जो इकरी सेट है जो कि हैदराबाद में है, उसने चने की सूखे के प्रति सहनशील, मूंगफली की भी एक किस्म दी है जो कि पर्ण रोग के प्रति प्रतिरोधी है, बाजरा की ऐसी किस्में तैयार कर ली है कि जिनमें आयरन और जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि जो है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमें मिल सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जगह किसान भाइयों के लिए आप बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो किसानों के लिए कई लाभ आएगा?
0: देखो किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और कीट व रोग प्रतिरोधक फसलें मिलती हैं, जो कि अभी हमने बताई चुकी हूँ। इससे जो होती है इनकी जो फसलों को उगाने की जो उत्पादन लागत होती है वो भी कम हो जाती है, और जब उत्पादन लागत कम हो जाती है तो किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जो इन फसलों के प्रयोग से जो हम हानिकारक कीटों के प्रयोग से बच जाते हैं, तो इससे हम पर्यावरण की अनुकूल प्रौद्योगिकी भी विकसित कर लेते हैं या हम अपने पर्यावरण को भी अनुकूल बना देते हैं। तो जैसे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने बीटी कपास की बात करी, और इसके अलावा जो अभी हमने गोल्डन राइस की बात करी कि जिसके उपयोग से या जो गोल्डन राइस जो किस्म पैदा की गई है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, तो इससे जो पोषक तत्वों में या जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो खराब मौसम के लिए कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कई बार उच्च तापमान की वजह से भी जो है फसलों को नुकसान हो जाता है, इन सभी खराब मौसम, सूखा और अत्यधिक तापमान को सहनशील करने वाली फसलें भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित कर ली गई है, और इसकी वजह से ही जो है किसान जो है इसका लाभ अपनी खेती में कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अपना खेत वहीं बिकमाए, जो खेत की मिट्टी है वह फसल उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता है बिना बढ़ावा के वास्ते भी जो है जैव प्रौद्योगिकी सहायक हो सकेगी?
0: बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जो मृदा की जो उर्वरता है वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। देखो, अब किसी भी फसल को बढ़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम माइक्रोबियल जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मृदा सुधार का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो जो हमारे कुछ ये जो चने वाली फसलें होती हैं या जिनको कहना चाहिए जो पल्स क्रॉप होती हैं, उनके जो जड़ों में क्या होता है माइक्रोबियल कवक और नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने वाले जीवाणु होते हैं, और जिससे क्या है इस तरह से हम अपने जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को है या नाइट्रोजन की आपूर्ति है उसको हम इन जीवाणुओं द्वारा कम कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह के फसलों में से जो जीन को निकाल करके ये अनाज वाली फसलों में भी ट्रांसफर किया गया है, जिससे इन ये फसलें भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके या जो सहसंबंध बना सके पौधों में और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
1: तो डॉक्टर साहब, इका द्वारा जो है बायो पेस्टिसाइड्स को निर्माण की प्रकार से हुआ है?
0: जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये जो अपने सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं उनका एक विकल्प होता है। जो हम सिंथेटिक बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये वातावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, साथ ही किसानों को इसकी उच्च रेट भी देनी पड़ती है। तो इसके विकल्प के रूप में जो पौधों में

0: या जीवों में और जंतुओं में जो इस तरह के रसायन होते हैं उनको जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको एक्सट्रैक्ट कर करके और बायोपेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो फसल है जैसे नीम है, पायरेथ्रम है, कपास है और तंबाकू है आदि जो वनस्पति, ये जो बायोपेस्टिसाइड है ये कम खर्चीले भी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से इनको किसानों को इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि इनका जो खर्चा आता है वो भी कम आता है और ये फसलों में बहुत अधिक कारगर साबित हो रहे हैं।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत चौकी, देखो आप बात बताया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, किसान का जो खेत है की मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बढ़ावा में भी सहायक है और खाद्य सुरक्षा ने भी सुनिश्चित करे है। तो इसके अलावा अब चलता चलता जो वहाँ का किसान भाई ही बाने ये विषय पर अपनी तरफ से और कोई बात ये चर्चा में रहेगी तो आप अपनी तरफ से कहना चाहो तो आप बता सको।
0: देखिए किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी वैसे एक क्या कहते हैं महंगी तकनीक है, किसानों के लिए महंगी तकनीक है, लेकिन यदि हम इस तकनीक का उपयोग करके अपने जो फसल है यदि उसमें वैज्ञानिक उसमें वांछित गुणों का उपयोग कर लें और अपने वातावरण अपने जो समस्याएं आ रही हैं चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे और दूसरी समस्याएं हो जो कीटरोधी हो, इस तरह की यदि हम फसलें तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बहुत अच्छी तकनीक है। और मैं तो चाहूंगी कि किसानों को भी इस तकनीक से रूबरू होना चाहिए, साथ ही इन जो इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको अपनाना चाहिए।
1: तो किसान भैया आई जानकारी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और आ जानकारी अपने दी डॉक्टर सुनीता गुप्ता जो कि प्रोफेसर है पादप कार्यकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप आई और किसान भैया ने अति चौकी और उपयोगी जानकारी दी। ठीक है वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिलाषा जी,
2: जी साहब
1: चौकी सी जानकारी के बाद क्यों ने एक चौकी सी लोक रचना और सुन लिया
2: बिल्कुल सुनो साहब।

0: आछो लागे छे रघुवीर मुरि सजनी
1: जी।
0: रमेश चंद्र शर्मा की आवाज में भजन तो आपा सुनया, पन भजन सुनता सुनता देखो घड़ी इशारो करी है कि भी खेती बाड़ी को टेम पूरो हो चाले, तो दो महेश भाई ने और
1: अभिलाषा ने
0: करा राम राम सा
1: राम राम सा।

लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से आपने सुना ये गीत सोहम की आवाज में। बोल है सैयद कादरी, संदीप श्रीवास्तव और अमिताभ वर्मा के, संगीत है प्रीतम का।

नमस्ते लंदन फिल्म से आपने सुना ये गीत जयेश गांधी और आकृति कक्कड़ की आवाजों में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत था हिमेश रेशमिया का।

शंकर महादेवन और अलीसा की आवाजों में आपने सुना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म का यह गीत। बोल है जावेद अख्तर के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

शान और कविता सुब्रमण्यम की आवाजों में आपने सुना दिल चाहता है फिल्म का ये गीत। बोल है जावेद अख्तर के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

केके की आवाज में आपने सुना भूल भुलैया फिल्म का ये गीत, बोल थे सैयद कादरी के और संगीत था प्रीतम का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, फिर समाचार संध्या, फिर न्यूज एट 9 और उसके बाद उर्दू में समाचार। साथ ही उसके बाद आप सुनेंगे रेडियोस्कोप और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कुछ पल की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी विशाखापट्टनम में हुई ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की, जहां पर संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है आंध्र प्रदेश में। और कार्यक्रम में रुख किया जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी का, जिसने 135वां ड्यूरेंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है और 22 वर्षों का इंतजार इस टीम ने आज मोहन बगान को 4-1 से हरा करके पूरा किया। कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला हॉकी विश्व कप का, जहां आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और सेमीफाइनल में अगर भारतीय महिला टीम को पहुंचना है तो उसकी नजरें हर हाल में ये मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता में आगे की राह तय करने पर होंगी। और क्रिकेट के मैदान की खबरों पर नजर डाली जाएगी, जहां कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शुरू हो गया और भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच के पहले ही दिन से अपनी पकड़ मजबूत की है और देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से फिर निकला है एक शानदार शतक। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज संपन्न हो गई। तो खेल के मैदान की तमाम खबरों से पहले आज बात की जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जहां ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज संपन्न हो गई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और अगर इसके मेन कंक्लूजन की बात की जाए तो इन दिस मीटिंग हेल्ड अंडर द ब्रिक्स चेयरशिप 2026 ऑफ इंडिया हैज गिवन अ फ्रेश पुश टू कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इन स्पोर्ट्स विद अ फोकस ऑन यूथ डेवलपमेंट, इंक्लूजन, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज।
1: A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sport technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. India's proposal for a BRICS sports manufacturing conclave has also received broad support. The inaugural conclave is proposed to be held in Udaipur in November this year, providing a platform for manufacturers, investors, technology companies and research institutions to share expertise and promote innovation. Another major initiative is the BRICS traditional and indigenous sports demonstration game proposed to be held in Ahmedabad in October. The event will showcase the rich sporting heritage of BRICS countries and strengthen culture and people-to-people ties. Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia called for a BRICS sporting partnership that moves beyond declarations and leads to practical cooperation through athlete and coach exchanges, joint competitions and knowledge sharing. The successful BRICS Sports Ministers meeting has laid the foundation for sustained sporting collaboration among BRICS nations. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला इस बैठक का। और इस बैठक से पहले केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स फ्रेंडशिप साइकिलिंग इवेंट का नेतृत्व किया। ये फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 87वां संस्करण था। ब्रिक्स युवा और खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान इस इवेंट का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का विषय है उन्नत भारत अभियान। इस दौरान मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के मंत्री और विभाग के प्रमुखों ने साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि विशाखापट्टनम में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया।
2: आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स समिट के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन करा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ रही है। देश में आज 18,000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करके हमारे देश के युवाओं ने फिटनेस का संदेश दिया है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग फिट रहे, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प कराया है। हम सब लोग मोदी जी के

0: संकल्प को चरितार्थ करने के लिए एवरी संडे साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें।
1: तो संडे यानी फिटनेस की डोज, और अब इसके बाद रुक करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ईस्ट बंगाल एफसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता है। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रेंदिंगा ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर के टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपिन सिंह ने पहले 10वें मिनट में ईस्ट बंगाल के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की और उसके ठीक 2 मिनट बाद लाल रेंदिंगा ने भारत को दोगुना कर दिया। 23वें मिनट में उन्होंने फिर एक गोल किया और ईस्ट बंगाल 3-0 से आगे कर दिया। मोहन बगान के लिए मनवीर सिंह ने 33वें मिनट में एकमात्र गोल दागा। हालांकि ईस्ट बंगाल ने जल्द ही वापस पलटवार किया और लाल रेंदिंगा ने अपना तीसरा और मैच का चौथा गोल करते हुए 44वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की और हाफ टाइम से पहले स्कोर 4-1 हो गया था। ईस्ट बंगाल ने दूसरे हाफ में आसानी से बढ़त बनाए रखी और शानदार जीत हासिल की। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद ड्यूरेंट कप अपने नाम किया है ईस्ट बंगाल ने, और अब ईस्ट बंगाल की शानदार जीत पर कुछ और अपडेट के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: All the goals in the Durand Cup final today were scored in the first half. Edmond Lalindika scored a hat-trick for East Bengal.
3: Rashid with the ball in. Jai Gupta puts it back. Hat-trick hero. A brutal, overwhelming, extraordinary and magnificent performance from Edmond Lalindika.
2: While Vipin Singh added another goal, Manbir Singh scored the sole goal for Mohan Bagan. Edmond Lalindika of East Bengal was selected as the player of the tournament and won the golden ball. Aladdin Azerai of Northeast United FC won the golden boot for scoring the highest number of goals. Mishal Kait won the golden gloves for best goalkeeper of the tournament. Defence Minister Rajnath Singh witnessed the final match at the stadium and presented the trophy to the champions. Kollan Laha for Akashvani News, Kolkata.
1: जहां फुटबॉल के मैदान में एक शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ऐसी उम्मीद आज भारतीय महिला हॉकी टीम को होगी कि किस तरह विश्व कप जो नीदरलैंड्स में खेला जा रहा है उसमें आज के अपने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आगे का सफर तय किया जाए, जहां 10:30 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने होंगी और भारत को यह मैच हर हाल में जीतना है। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा 1-3 गोल से, और इसके साथ भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना काफी हद तक सीमित हो गई है और दूसरी टीम के परिणामों पर निर्भर हो गई है। अब कार्यक्रम में बात की जाए क्रिकेट की, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने आज 5 विकेट पर 300 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल ने फिर आज एक शानदार शतक लगाया और 117 रन की पारी खेली। कप्तान गिल ने 50 रन जबकि यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए। फिलहाल ध्रुव जुड़ेल 7 और सराज जैन 4 रन बनाकर के क्रीज पर मौजूद हैं, और पहले मैच की अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। क्या कुछ रहा आज के दिन में खास?
4: शक्ति, आज भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया है श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने। अगर हम शुरुआत की बात करें तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने काफी सधी हुई शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन 37 रन पर केएल राहुल आउट हो गए जब टीम का स्कोर 37 था। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल जब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। वहीं 4 नंबर पर शुभमन गिल ने 50 रन बनाए और ऋषभ पंत 3 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी बाई कलाई में दर्द के कारण वो अपना आगे का खेल जारी नहीं रख सके, एक शॉर्ट बॉल उनके कलाई में जाकर लग गई। वहीं रविंद्र जडेजा ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया जहां उन्होंने 83 गेंदों पर 43 रन बनाए। वो अपने अर्धशतक के करीब थे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से असिता फर्नांडो की गेंद पर बोल्ड हो गए।
1: जी बिल्कुल, और शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। क्या खास रिकॉर्ड इन खिलाड़ियों ने आज बनाए हैं?
4: अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो उन्होंने लगातार दूसरा शतक लगाया है इस मुकाबले में। इससे पहले भी उन्होंने एक शानदार शतक जमाया था और वो 6वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने श्रीलंका की धरती पर लगातार शतक जमाए हैं। अगर कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने आज अर्धशतक लगाया और अपने 50 रन की बदौलत 1000 रन WTC की सिंगल साइकिल में पूरे करते हुए विराट कोहली के 932 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने 3000 रन भी पूरे कर लिए और वो चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि भारत को सफेद जर्सी में एक नई उम्मीदें दिखती हुई जिसकी भारतीय टीम को काफी समय से दरकार है कि रेड बॉल क्रिकेट में कुछ और मजबूत परिपक्व खिलाड़ी टीम को देखने को मिले। और टेस्ट क्रिकेट की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश श्रृंखला की बात की जाए।

0: ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन में खेले गए क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश से मिली हार का बदला ले लिया है। आज साउथ मैकी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे ही दिन पारी और 51 रन से हरा दिया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे और आज के हीरो विशेष क्या कहेंगे मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस पर, उससे पहले इस मैच पे दो दिन पे टेस्ट मैच समाप्त,
1: ये सबसे बहुत ही अलग बात रही जो टेस्ट मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हुआ। मुकाबले में सिर्फ 750 गेंदें ही फेंकी गई और ये जो है चौथा सबसे छोटा मुकाबला बना है टेस्ट क्रिकेट का। अगर हम बांग्लादेश की पहली पारी की बात करें तो 64 रन पर पारी उनकी सिमट गई थी। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उन्होंने 210 रन खड़े किए थे। वहीं बांग्लादेश जब दूसरी पारी में एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए आया तो उन्होंने 95 रन बनाए। इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ ये पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने दोनों पारियों में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया है, तो ये बहुत ही निराशाजनक हार है बांग्लादेश के लिए, जबकि उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करी थी। तो इस जीत के हीरो रहे हैं मिचेल स्टार्क, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है परचम लहराया है। 10 विकेट हॉल उन्होंने लिया है इस मुकाबले में, पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट। मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी जो है वो 234 विकेट पर पहुंच गई है WTC की। इस साइकिल में उन्होंने पैट कमिंस का रिकॉर्ड जो है धराशायी कर दिया है।
0: जी बिल्कुल, तो रिकॉर्ड धराशायी किया है। भारत के लिए अगर देखा जाए, भारत की नजरें लगातार WTC की अपनी रेस पर बनी हुई है। इस मैच के परिणाम ने क्या हद तक भारत को फायदा देने का काम किया होगा?
1: बांग्लादेश की जो WTC रैंकिंग है वो अभी भी चौथे नंबर पे बांग्लादेश की टीम बनी हुई है 55.5 अंकों के साथ, लेकिन अगर भारतीय टीम श्रीलंका के साथ ये जो मुकाबला खेल रही है अगर जीत जाती है तो वो चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगी और बांग्लादेश खसक कर 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बनी रहेगी 80% अंकों के साथ।
0: जी बिल्कुल, तो भारत को उम्मीद होगी कि श्रीलंका पे एक और शानदार जीत दर्ज की जाए और अपनी रैंकिंग में एक पायदान की छलांग और लगाई जाए। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। नई दिल्ली में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। ये प्रतियोगिता 17 अगस्त से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई थी। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कौन कौन खिलाड़ी खिताब अपने नाम करने में सफल रहे।
2: विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का खिताब फ्रांस के एलेक्स लेनियर और महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में एलेक्स ने फाइनल मुकाबले में जापान के कोदाई नाराओका को सीधे गेम में 21-11 से हराया। महिला सिंगल्स में अन से यंग ने जापान के अकाने यामागुची को 21-17 और 21-14 से हराया। डबल्स स्पर्धाओं में पुरुष डबल्स का खिताब चीन के लियांग वेई किंग और वांग चंग ने जीता। चीनी जोड़ी ने फाइनल मलेशिया के अरोंचिया और सो वोयिक को 21-17, 21-16 से पराजित किया। वहीं दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सा ही की जोड़ी महिला डबल्स की चैंपियन बनने में सफल रही। इस जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में चीन की लियो शेंगशू और तांग निंग की जोड़ी को सीधे गेम में 21-15, 21-15 से पराजित किया, जबकि फ्रांस की जोड़ी थॉम गिस्कल और डेल्फिन डेलरू ने इतिहास रचते हुए मिक्स्ड डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में गिक्वेल डेलरू की जोड़ी चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फेंग यांझे और हुआंग डोंगपिंग को 22-20, 19-21, 21-15 से शिकस्त देते हुए फ्रांस की ओर से मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी भी बनी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारत की मेजबानी को काफी हद तक विदेशी खिलाड़ियों ने सराहा है और भारत के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी ने किया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में महिला डबल्स का कांस्य पदक अपने नाम किया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के उस कांस्य पदक के बाद इस प्रतियोगिता में अब भारत को जाके ये पदक मिला है। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने कहा कि सच में पोडियम पे खड़ा होना उनके लिए एक कल्पना थी और किस तरह उनका ये मैच गुजरा इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं।
3: सेकंड सेट वो लोग काफी पेशेंटली खेले, तीसरा गेम बहुत अच्छा खेला। आज आई थिंक बैक कोर्ट कंट्रोलिंग प्रीटी वेल, थोड़ा और अगर मैं सपोर्ट करती फ्रॉम द नेट आई थिंक आई कुड हैव लॉस्ट द सेकंड सेट, बट ऑल्सो इन दिस थर्ड सेट थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे पर रिदम नहीं आया। आई थिंक प्लेइंग विद दिस चाइनीज प्लेयर्स आई फील लाइक वी वर बिट मोर कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट गेम, वी वर लीडिंग इन द फर्स्ट हाफ, देन दे कवर्ड इन टू 11-7, दे जस्ट टुक द ब्रेक एंड अगेन वी कवर्ड देम, we catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them. But in the second game, we didn't get the rhythm.
0: तो शानदार खेल दिखाया इस जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि सेमीफाइनल में इस जोड़ी को चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से 21-18, 13-21 और 8-21 से हार का सामना करना पड़ा था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और

0: سوالات ہمیں ہماری ای میل sportscan.air@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہم کو انمتی دیجیے. نمسکار.
1: نمسکار. آکاشوانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں سر فیروزی. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है. आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं. विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई. ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती. और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है. श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है.
2: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी कि कौन है इसमें. तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है. बहुत लोगों को हमें जुड़ना है. हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है. हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ. मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें. प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की. स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है. इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है.
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं. भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है. आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है.
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं.
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया. और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है. उन्होंने भारत को एक बड़ा

0: जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने यह साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
2: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देशभर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
3: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है कला संस्कृति के द्वारा, नित्य गीत के द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
4: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में

0: लागू करने के लिए सहयोग करें।
1: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि ये बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ है शक्ति सिंह।
2: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 7वीं बार ड्यूरेंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक है जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक है। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरला, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए

0: भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफ एम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 9 बजे कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा

0: रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: सलामी फिल्म का गाना सुनिए, अलका याग्निक की आवाज में। गीत सुरेंद्र साथी का है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सातवां आसमान फिल्म का गाना, इसे लिखा है सूरज सानिम ने, संगीत राम लक्ष्मण का है।

और कपट की तुम हो पुड़िया, कौन खोलेगा नाम न जानू छल और...

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हुई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावां बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल

हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माताजी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी, नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी, छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

शम्मी कपूर के साथ उनकी एक और फिल्म आई थी ब्लफ मास्टर। इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

उस जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।

0: दोस्तों सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब शहंशाह बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं है, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नहीं नहीं के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं।

0: तुम्हें दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी तीन फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

0: हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।
1: आओ ओए ट्विंकल ट्विंकल।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

महेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैतारी और ज्वारभाटा।

0: पवन
1: उसका तो साजन है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह।
2: सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला, और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजे लीजिए अपने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आप सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत, शब्द लेकर नीरज का है संगीत, एस डी बर्मन का।

अभी आपने फिल्म प्रेम पुजारी का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म आंधी का ये गीत। शब्द लेखन गुलजार का है, संगीत आर डी बर्मन का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

आपने हेमंत कुमार को फिल्म प्यासा में सुना। आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म गोलमाल का ये गीत। शब्द रचना गुलजार की है, संगीत आर डी बर्मन का।

आपने किशोर कुमार को फिल्म गोलमाल में सुना। आइए अब सुनते हैं मुकेश का गाया फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म मशाल का ये गीत। जावेद अख्तर का लिखा है गीत है संगीत, हृदयनाथ मंगेशकर का।

आपने फिल्म मशाल का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म अजनबी से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

0: बात आ गई। वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बस समझ जाओ।

अभी आपने किशोर कुमार को फिल्म अजनबी में सुना। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत। शब्द लेखन शैलेंद्र का है, संगीत ओपी नैयर का।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म अमर प्रेम का ही गीत। आनंद बख्शी का लिखा है गीत है संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आपने फिल्म अमर प्रेम का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं गुलजार की रचना को आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म घर से। इस गीत को अजी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म दो रास्ते में सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में लता मंगेशकर का गाया फिल्म किनारा का ये गीत। शब्द लेखन गुलजार का है, संगीत आर डी बर्मन का।
1: करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद।

लता मंगेशकर की गायल फिल्म किनारा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत में यही खत्म होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पर प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र

0: खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।